से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। कहती हूँ भी कि फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से कि इस दुनिया में जीना हो तो

फिल्म चलते चलते से आपके लिए यहाँ से हमने सुने हैं। शैलेंद्र जी और लता जी के आवाज़ में

0: महेंद्र कपूर हिट्स सॉन्ग हमरा से सुना दिया कि नीले गगन के तले।
1: ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति नीच। ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए, नीच ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए सत्य की खोज करते हैं। हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद् गीता जन्म पर आधारित भेदभाव को सिरे से नकारता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, अर्थात समाज का विभाजन गुणों और कर्मों के आधार पर हुआ है, न कि जन्म के आधार पर। शास्त्रों के अनुसार नीच वह नहीं है जो किसी विशेष परिवार में पैदा हुआ है, बल्कि नीच वह है जिसकी प्रवृत्तियां तामसिक हैं, यानी वह जो अज्ञान क्रोध और हिंसा में लिप्त है। महान संतों और स्मृतियों के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसे उच्च या निम्न बनाते हैं। शास्त्र चार प्रकार के लोगों को निम्न श्रेणी में रखते हैं। पहला, कृतघ्न, जो दूसरों के उपकार को नहीं मानता। दूसरा, अधर्मी, जो जानबूझकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। तीसरा, अहंकारी, जो सत्ता या धन के मद में अंधे होकर मानवता का अपमान करता है। चौथा, असत्यवादी, जिसकी वाणी और विचार में छल हो। यहां तक कि महान ऋषि वाल्मीकि और वेद व्यास के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध किया कि जन्म गौण है और ज्ञान सर्वोपरि। सवाल उठता है कि फिर समाज में यह भेदभाव आया कहां से? इतिहासकार मानते हैं कि बाहरी आक्रमणों और मध्यकाल के दौरान लचीली वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। स्वार्थ और अज्ञानता के कारण कुछ लोगों ने धर्म की गलत व्याख्या की और नीच शब्द को जन्म से जोड़ दिया। यह धर्म की नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की विकृति थी। आध्यात्मिक रूप से हर जीव के भीतर एक ही आत्मा का वास है। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यदि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है तो कोई नीच कैसे हो सकता है? वास्तव में नीच केवल हमारे विचार और संस्कार हो सकते हैं, शरीर या कुल नहीं। आज के युग में नीच शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए करना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अधर्म भी है। हिंदू धर्म की असली सीख वसुधैव कुटुंबकम में है। श्रेष्ठ वह है जिसका मन शुद्ध है और जिसके कर्म समाज के कल्याण के लिए हैं। अपनी सोच बदलिए, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। नीच ये शब्द हमारे समाज के लिए।
2: सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: जॉनी मेरा नाम, जी हाँ जॉनी मेरा नाम 1970 में पिक्चराइज है। हेमा मालिनी, देवानंद इसमें स्टार कास्ट है। हाँ, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
1: खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है, और जब हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो हर पल खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है, और जब ये किसी खतरे का सामना करता है तो कभी कभी एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया देता है जिसे हम बुखार कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बुखार आखिर होता क्या है और ये क्यों आता है? असल में बुखार हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई बाहरी हमलावर जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई विषैला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। ये हमलावर पदार्थ, जिन्हें पायरोजन कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को संकेत भेजते हैं जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है, यानी ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पायरोजन के प्रभाव से हाइपोथैलेमस शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाकर एक नए ऊंचे स्तर पर सेट कर देता है। जब ये थर्मोस्टेट ऊपर सेट होता है तो शरीर को ऐसा लगता है जैसे वह ठंडा है, भले ही शरीर का तापमान बढ़ रहा हो। इसी कारण हमें ठंड लगती है, कंपकंपी होती है और शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। ये बढ़ा हुआ तापमान कई बैक्टीरिया और वायरस के लिए प्रतिकूल वातावरण बना देता है, जिससे उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को उनसे लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन फिर सवाल आता है, बुखार की दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, जैसे पैरासिटामोल या अन्य एंटीपायरेटिक दवाएं? ये दवाएं मस्तिष्क में PGE2 नामक रसायन के उत्पादन को कम कर देती हैं। यही रसायन हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को ऊपर सेट करता है। जब PGE2 कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को वापस सामान्य स्तर पर ले आता है और हमें राहत महसूस होती है। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है संक्रमण, जैसे सर्दी, फ्लू, गले का संक्रमण या पेट का संक्रमण। लेकिन कभी कभी सूजन से जुड़ी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ दवाएं, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि या हीट स्ट्रोक भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसलिए बुखार सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये अक्सर एक संकेत होता है कि हमारा शरीर किसी चुनौती से लड़ रहा है।

0: लता जी और रफी जी के आवाज में ये मौसम भीगा भीगा है। नेहा तीन सीफन तक में पिक्चराइज किया गया ये फिल्म है और फिल्म का नाम है धरती।
1: सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि जीन्स, पोषण और एनवायरनमेंट

हाँ, चोरी पकड़ा गया, चोरी पकड़ा गया, उनसे मिली नजर। झुक गया आसमान से, निकाल दिया गया है लता जी के आवास में। कलाकार इसमें है शायरा बानू और राजेंद्र कुमार।

0: जैसे हम सुनेंगे अगर हम शराब पीते हैं तो उसका असर कहाँ से शुरू होता है और उसका असर क्या है?
1: क्यों? एक घूंट शराब पीते ही कुछ ही मिनटों में आपके दिमाग के अंदर केमिकल तूफान शुरू हो जाता है और शराब आपके ब्रेन को अंदर से कैसे बदल देती है? देखिए, पहले 5 मिनट में जैसे ही आप शराब पीते हैं वो आपके पेट से सीधे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है और सिर्फ 5 मिनट में वो ब्रेन तक पहुंच जाती है, क्योंकि अल्कोहल एक छोटा मॉलिक्यूल है और आसानी से पानी में घुल जाता है। हमारा ब्रेन 70-80% पानी से बना है, मतलब अल्कोहल को सीधा रास्ता मिल जाता है। 5-10 मिनट बाद अब शुरू होता है असली खेल। यहाँ अल्कोहल बढ़ा देती है डोपामीन, जिसे कहा जाता है हैप्पी केमिकल। शराब पीते ही आप अचानक रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और थोड़ा ओवर हैप्पी महसूस करने लगते हैं। स्ट्रेस गायब, टेंशन खत्म। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 10 से 20 मिनट बाद अल्कोहल बढ़ाती है GABA, जो ब्रेन को शांत करता है, और ब्लॉक करती है ग्लूटामेट, जो ब्रेन को एक्टिव रखता है। नतीजा, जजमेंट कमजोर, इनहिबिशन खत्म। आप वो बोल देते हैं जो नॉर्मल में कभी नहीं बोलते। गलत फैसले, रिस्की बिहेवियर, सब यहीं से शुरू होता है। फिर 20 मिनट के बाद अब असर पहुंचता है सेरेबेलम तक, जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन संभालता है। तब चलते वक्त लड़खड़ाहट, बोलते समय जुबान लड़खड़ाना, रिएक्शन टाइम धीमा, यानी आपको नशा हो चुका होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझकर फैसला लेता है, यानी आपका कंट्रोल सिस्टम कमजोर हो जाता है अगर ज्यादा पी ली तो। अब बारी आती है हिप्पोकैम्पस की, यही मेमोरी को संभालता है। रिजल्ट, ब्लैकआउट, आपको याद ही नहीं रहेगा आपने क्या किया, और ये सब सिर्फ एक दो ड्रिंक से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, अल्कोहल एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, ग्रे मैटर से सिकुड़ सकता है। नुकसान धीरे धीरे शुरू होता है

पंछी बनो उड़ती फरो मस्त गगन में। ये सुंदर सा गीत हम सब मिलकर सुने, फिल्म का नाम चोरी चोरी, लता जी के आवाज में, लेखक है हसरत जयपुरी और म्यूजिक शंकर जय किशन जी के साज में। चले धीरे धीरे हम कुछ नए गीत सुनने के लिए आपके लिए जो तैयार करके रखी हूँ। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं मेरे दोस्त, और आज कभी जाता नहीं है। तो आज जो है ये पल जो है, इसे एक नया मोड़, एक नया दिशा दे, इसे एक बेहतरीन यादगार बना लो मेरे दोस्त।

0: जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट
1: नैना के बाद सुनिए जी कि चोली के पीछे क्या है।
0: चोली टाइप

अब बता ही दो कि क्या है, मेरे को नहीं पता। मोहब्बत होना ना हो, मोहब्बत होना ना हो, ये अलग बात है मेरे दोस्त, ये अलग बात है। मोहब्बत हो या ना हो ये अलग बात है, पर तेरी चाहत ने हमें अपने दिल से मिला दिया है। जिंदगी का हर लम्हा, जिंदगी का हर लम्हा सुहाना लगता है। बहुत प्यारा लगता है जब तेरा हाथ मेरे हाथों में लगता है।

गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा और एक बहुत प्यारा सा मुस्कान की तरफ साथ में एक एहसास भी नहीं कि तुझे एहसास भी नहीं मेरे दोस्त कि तू मेरे लिए क्या हो। आप बहुत खास हो, पहले आदत फिर जरूरत, अब और अब जिंदगी बन गए हो। वो मेरे लिए इतनी खास है कि वो मेरे लिए इतनी खास है जैसे धड़कन

ये भी सुनिए मेरा मेरे दोस्तों भाई बहनों, रेडियो फाउन के सुनने वालों, कि तू मेरी बेबी, मैं तेरा सोना, तू मेरी बेबी, मैं तेरा सोना, धरती क्यों है पागल तुझको तो मेरे दिल में ही होना है। तू मेरे बेबी, मैं तेरा सोना।

इस बात पे तो ये शायरी होना चाहिए कि तू आकर, तू आकर यूं ही रोज मुझे छू जाया कर, हर लम्हा में अपना, हर लम्हा में अपना होने का एहसास दिलाया कर तो ना। कभी आकर पास मेरे ठहर ठहर जाया कर, तो कभी तू मुझ में ही उतर जाया कर। ये कॉम्प में एल्क दाग आ रागन, ये लात में एल्क मोमेंट फूलन दैट यू फॉर मी बेन। सोम्स कम यू दिख्त बै एंड सोम्स कम यू दिख्त बै मी एंड सोम्स कम यू इन मी।

मेरे दोस्त, प्यारे प्यारे सुनने वालों, तू मेरे जिंदगी के वो खुशी है जो हर दिन रंग

तेरा दीदार की हसरत, तेरे दीदार की हसरत, तुझे पाने की ख्वाहिश है। हर एक लम्हा तेरे दिल में उतर जाने की ख्वाहिश है। तेरे सीने पे रख कर, तेरे सीने पर रख कर, सर को जुल्फों को खेलने में, मेरी इस जिंदगी को अब संवार जाने की ख्वाहिश है। कितनी ख्वाहिशें रहते न हम सभी को, डीप इन मेन हार्ट फलांग एक एरनार यौ तहबन, एक वेल एल्क मोमेंट इन योर हार्ट सेन, एक लेग मेन होफ ऑप योर स्कोट एंड स्पेल मैच योर हार। Ik wil van mijn leven iets moois maken samen met je.

गए, लत लग गई, यानी कि एक खवंत हो गया है, लत लग गई। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो उतर जाएगी, किसी की आंखों से पियो, किसी की आंखों से पियो, खुदा की कसम उम्र सारे नशे में गुजर जाएगी। तन्हाई में मुस्कुराना इश्क है, तन्हाई में मुस्कुराना इश्क है, एक बात को कब से छुपाना वो भी इश्क है। यूं तो नींद नहीं आती है रात को, यूं तो नींद नहीं आती है रात को, यूं तो नींद से जाग जाना इश्क है।

ये घड़ी ये पल ये घड़ी ये पल आपको बहुत खुशियां भरा रहे, बहुत खुशी भरे ये पल ये घड़ी आपका हो।

तुमसे प्यार हुआ है अलका याग्निक औरो। उदित नारायण जी की आवाज में हम मिलकर सुने सुने वालों की तुमसे बस प्यार हुआ है।

हम सब मिलकर सुने आशा भोसले जी की आवाज में फिल्म का नाम ताल। इसमें संगीत दी है आर डे बर्मन साहब जी ने।

चुरिया चुराना ये दिल, जो हम सपने सुने सुने वालों, और ये सुंदर सा गीत निकाला गया है कुली नंबर वन से। और हम देखें तो इसमें जो अपना गीत का आवाज जो गाए है अभिजीत और चंदना दीक्षित जी ने,

यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे कि इश्क बिना, हाँ जी इश्क बिना सुनेंगे हम, फिल्म ताल से निकाला गया है सुंदर सा गीत।

आर रहमान के साज और संगीत में जो सुनने वालों हमने सुने ये सुंदर सा गीत उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में

ऑफ लाइफ क्या है और आर्ट ऑफ लाइफ क्या, पार्ट और अर्थ। जिंदगी में मुश्किलों का आना, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। खुश रहने के मूल मंत्र सुनिए जी, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जो पछता नहीं वो खाना नहीं चाहिए, जो सुनता नहीं उसे समझाना भी नहीं चाहिए, जो सत्य पर भी रूठे, जो सत्य बोलने पर भी रूठे तो उसे मनाना नहीं चाहिए, जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं चाहिए, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसको भी बनाना नहीं चाहिए।

मेलोडी ऑफ लाइफ फिल्म सूर से निकाला गया है। महालक्ष्मी आयर से सुने वालों, हमने सुने कि कभी शाम ढले तो दिल में आ जाना। जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा, और जो छोड़ जाए वो साथ कैसा।

खामोशी बहुत कुछ कहती है, खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगा कर नहीं दिल लगा कर सुनो। आईना के सामने खड़े होकर, आईना के सामने खड़े होकर खुद से माफ़ी मांगे, आईना के सामने खड़े होकर खुद से ही माफ़ी मांगे। सबसे ज़्यादा अपने ही दिल, सबसे ज़्यादा अपने ही दिल को दुखाया है औरों को खुश करते करते। ठोकर नहीं खाएंगे जनाब तो कैसे जानोगे कि आप पत्थर के हो या शीशे का। जो बीत गया उसे जाने दो, जो बीत गया उसे जाने दो, आने वाला है, आने वाला है सुनहरा कल, बस उसे आने दो।

भाई बहनों, सुखी जीवन जीने के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सब हमारे सोचने के तरीके में आप पर ही निर्भर करता है और आप अक्सर दैनिक जीवन में इसे देखा करते हैं। मित्रों, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनमें से आप बहुत कम उपयोग करते हैं, फिर भी लोगों के पास और अधिक होना चाहिए। यदि आप उन अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए छोड़ सकते हैं मित्रों, तो आप खुद को काफ़ी बेहतर और तनाव से मुक्त अनुभव करेंगे।

भाई बहनों, जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि हमारे पास जो है वो बहुत है, और ये जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, मैं दैनिक जीवन में किसके साथ जुड़ता हूँ, मेरे लोग कौन हैं, क्या वे सभी विश्वसनीय हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अभी उनकी मदद कर सकता हूँ, तभी ये सब लोग जुड़े हुए होते हैं। मित्रों, इस बारे में ध्यान से सोचिए सोचिए।

मित्रों, प्यार प्यार नहीं लेकिन प्यार पाना एक बात है, प्यार करना और प्यार किया जाना एक दूसरी बात है। बस इतना ही याद रखे, लेकिन इसे जरूर प्राप्त करें, जरूर प्राप्त करें मित्रों, फिर तुम्हें भी मधुर और दयालु तथा ईर्ष्या रहित होना चाहिए, ईर्ष्या रहित होना चाहिए। प्यार से और ईर्ष्या बात ना ही बनत है मित्रों, ये याद रखें।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा।

सुनो वालो के सेवा में मैं हूं आपका सेवक संजय। और आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे। सभी को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं। आज जिनका जन्मदिन है बधाई देना चाहता हूं। जो सफर पे जाने वाले हैं उन्हें हम शुभ यात्रा कहते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं अभी निकलने के लिए अपने नौकरी को, और उन्हें हम ये कहते हैं कि दो दो हाथ दो दो पाओ और साथ में दिमाग से काम करना। जो हमारे देश में यात्रा पे आए हैं, अनफैन फकांसी तुखवेंस, हमारा देश से कैसा देश है जहां दुनिया के हर एक प्रांतों से लोग आते हैं। अनलांत फॉल मत म्यूजियम्स कंस और कल्चर इस देश में, जिनका घर आज कुछ कार्य है कुछ कारज है, उन्हें हम भी बधाई देना चाहता हूं। सभी बच्चों जो तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए और जो चले भी गए हैं, तो उन्हें हम एन फाइन दाख तुखवेंस नामंस द हेल फाहन क्रू। सुनो वालो, अभी हम कार्यक्रम भजन जो औखतन प्रोग्राम हमारे होते हैं उस ओर बढ़ेंगे। हमारी पहला भजन जो कनाडा टोरंटो और अम्स्टरडम नेबल पैलेस फॉर यू हिपोटेकन एंड फिनांशियरिंग, और यहाँ पर आप मालूमात कर सकते हैं। कुछ भी आपको हिपोटेक और फिनांशियरिंग के बारे में जानकारी लेना है तो जरूर आप फोन कीजिए 06-25-13-63-04। एक सुंदर सा भजन जो हमारे देश के कलाकारों ने और लिखे है सूरीनाम में जाकर, जो 150 साल पहले हमारे पुरखों जो जाकर के सूरीनाम में गए और उस समय अपना कला भी लेकर गए थे और कितने और हमारे लिए छोड़ भी गए। तो हम एक अपना देश के सूरीनाम के एक गायक का भजन आपके लिए और प्रस्तुत करता हूँ।

इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मन की शांति से बड़ी हो। सुनो वालों, ये भजन जो स्पॉन्सर करने वाले हैं कनाडा और टोरंटो एंड आम्स्टरडम नेबल पैलेस फॉर ऑल यू हिपोटेकन एंड फिनांस शेयरिंग।

Den Haag, Vorenpark, Leidseveen, Anand Sharma, Groothandel, BV. Info Anand Arjun Sharma, Jinkatarka nummer he 0655732867. उनके ओर से एक भजन जो हम चलाने वाले हैं आपके लिए।

किसी को समझने के लिए भाषा ही हमेशा आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। सुनने वालों, ये जो भजन चलाया गया दनाक फोर पार्कलाइट्स कफेन आनंद शर्मा जी की ओर से ग्रोथ हैंडल बेफई और जिसका तार का नंबर है 06557328 67। कोई भी और सामान आपको चाहिए ग्रोथ हैंडल अर्जुन शर्मा।

0: अगला भजन जो हमारे और स्पॉन्सर किए गए प्रोग्राम में रखा गया है वो है दनहाख लाइट्स ऑफ एन सुंदा खुरुंतन एंड फ्रॉयट हांडल, जिनका मालिक श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी है। और अगर कुछ भी आपके उससे और मालूमात करना है तो उनका तार का नंबर है 0622795862। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन जो हम आपके लिए और प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।
1: जय

सुनने वालों, इस बात को शायद आप कभी सुने होंगे, मां बाप के पास, मां बाप के पास बैठने से दो फायदे होते हैं। आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं और मां बाप भी कभी बूढ़े नहीं होते हैं। ये समझ समझ के समझने वाले बात है। दना फोर पार्क लाइट्स फेन सुंदा ग्रुंतन एंड फ्रॉयड हांडल, जिनका मालिक परशुराम मोहलाल जी है, उनके ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। सुनने वालों, अगला भजन जो देहा एर बाउ एंड ऑनरहाउस बद्रैफ, जिनका मालिक श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी है, उनका तार का नंबर है 06260042241। कोई भी ऑनरहाउस और बाउ वर्कशॉप है इधर के लिए, अगर आपको और मालूमात करना है तो जरूर उनके आप फोन कर सकते हैं।

इस भजन का स्पॉन्सर करने वाले श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी ने, जो देनहाग फोर पार्क लाइट्सगेवेन देहा एर बाउ एंड ऑनरहोट्स बद्रेव का मालिक है। सुनने वालों, अगला भजन जो देनहाग में केन्सरात सेस हिंदू बासस्कूल फाहुन फरेनिंग अलगमेने हिंदू ऑनरवाइज नेदरलैंड की ओर से जो हमारे लिए और ये सुंदर सा भजन स्पॉन्सर किए हैं।

संसार के सबसे सुंदर और प्यारा संबोधन सुबह की राम राम, सुबह की राम राम ही है। सुनने वालों, ये भजन के स्पॉन्सर किया गया है बास स्कूल फाहुन की ओर से, जो दिनहाग में कहीं सरा छे पे है। सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी ऑनदरवाइजर्स ऑनदरवाइजरसन, सभी डायरेक्सी की ओर से सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनने वालों, अगला भजन जो सुरीनाम लिफोर्नो मेनकंदाम हुक इंदिरा गांधी वेख से, श्री भक्ति राज शिव पार्वती मंदिर, वहां का सभापति सुभाष महावीर जी है, जिनका तार का नंबर है 0059786757587।

किसी ने बहुत अच्छे कहा है, अपने बुजुर्गों की कदर करो, क्योंकि आपने भी हमेशा जवान नहीं रहना। सुनने वालों, ये भजन का स्पॉन्सर किया है सुरिनाम लिफोर्नो मेनकदाम से, हुक इंदिरा गांधी वेख श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर, जिनका सभापति सुभाष महावीर जी है, उनके ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला भजन दनहाख माताजी लिलियन मोतीराम जी के ओर से, उनके ओर से एक सुंदर सा भजन का मांग किया गया है।

दो ही चीजें ऐसे होते हैं जिसे देने में किसी का कुछ नहीं जाता है, पहला जो मुस्कुराहट और दूसरा जो दुआ। ये भजन के स्पॉन्सर करने वाले दनाख क्नुतल स्त्रा तीन हिंदी प्रचार संस्था फैमिली चांद गुरबीन की ओर से और चलाया गया। कोई भी और प्रश्न रखना है अपना भाषा अपना संस्कृति के अंतर्गत तो भाई चांद जी को और जरूर मालूमात कीजिए।

0: भजन जो गमेंद राजलित लैन बाबूराम जी के ओर से। दनहा गमेंद राजलित लैन बाबूराम जी के ओर से।
1: चादर

ये भजन जो चलाया गया खमीनता रातस्लित लैनो बाबूराम जी के ओर से। हमारा अगला भजन जो रोटरडम होपफुली टेक्सास वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात 46 श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लीडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, ये भजन जो स्पॉन्सर किया गया है रोतराम होफली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोतराम वेस्ट ब्लॉक माकरस्त्रात 46 श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लाइडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी की ओर से। यहां तक जो भजन स्पॉन्सर प्रोग्राम चलाया गया, अगर आप इच्छा रखते हैं कि आपकी ओर से भी एक भजन चलाए जाए तो जरूर हमारे रेडियो आत्मिश्रासी से मालूमात कीजिए। हम सब हर समय तैयार रहते हैं आपकी सेवा के लिए।

सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है जो डेनहाग शहर से हॉलैंड देश से और ब्रॉडकास्ट किया जाता है। चाहे गर्मी या सर्दी, हर समय रहता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आपके साथ। मैं हूं संजय और कुछ समय के सब कुछ समय तक मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा।

बच्चे मन के सच्चे, ये सुंदर सा गीत जो फाहुन रेडियो द्वारा आपको सुनाया गया। आपको एक शुभ दिवस, एक ऐसा दिन हुए जिसमें ना सिर्फ आप अपने आप के लिए, कम से कम अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तों, नाते के भूलना नहीं। हम अगले गीत जो चुन करके रखा है, 1981 में निकाला गया ये फिल्म, जो कुछ उस समय पे और ये फिल्म को देखे होंगे,

कुमार गौरव और विजयता पंडित ने इस फिल्म में काम किए। 1981 के फिल्म जो फिल्म का नाम लव स्टोरी से निकाला गया है ये सुंदर सा गीत। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगले गीत का बोल क्या है कि अभी तो कोई गुस्सा हो गया या गुस्सा हो गए हैं तो उसके लिए क्या होना है। कहते हैं बात बिगड़ जाए तो क्या होगा,

गीत का बोल जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर पल आनंद ले, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती है। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगला गीत जो खुशियों से भरे हुए है,

ये सुंदर सा गीत जो कॉन्सर्ट में गाया गया और खास करके गाया गया तो हमारे अनाउंसर साथी शांता खेमई जी और उनके आवाज में हम सब सुने। दोस्तों ये बात है कि आज अगर हर पल का आनंद ले, हर पल का आनंद ले, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती है। इस पर ध्यान देना कि हर पल हमें आनंद ही आनंद लेना है, खुशियां कभी इंतजार नहीं करते हैं। दोस्तों इस बात का ख्याल रखना। और खुशियां कभी बताकर भी नहीं आते हैं और जाते हैं।

ख्वाब में जो कुछ लोग याद रह जाते हैं और उनमें से कुछ लोग को भूल जाते हैं।

गुलजार जी ने बहुत अच्छे लिखे हैं कि हंसते रहेंगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलता। हंसता रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलती। सुनने वालों, जैसे कि मैं देख रहा हूं, हमारा कुलेखा साथी स्टूडियो तोई में उपस्थित हो गए हैं।

आज एक ऐसा दिन बनाइए जहां आप कम से कम थोड़ा से हंसिए, क्योंकि जैसे गुलजार जी ने लिखे हैं कि आंसुओं का जगह आंखों में भी नहीं रहता है, वो भी टपक जाते हैं।

की तमन्ना एक फिल्म जिसमें देवानंद जी और सीनत अमन ने अपने काम दिखाई। ये सुंदर सा गीत जो लता मंगेशकर जी और किशोर जी ने अपना आवाज दिए

तुझे देख कर मेरा दिल खोने लगा, ये सुंदर सा गीत को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बिना रिश्ते किए ही रिश्ता निभाते हैं और शायद वही लोग जिंदगी में दोस्त कहलाते हैं। बस यहाँ तक था हमारे कार्यक्रम, जो यहाँ से कार्यक्रम हमारे कुलेखा साथी जो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, मैं यहाँ से आपसे विदाई लेंगे। आशा ये रखता हूँ कि सुबह से मैं आपके साथ जुड़े आ रहूं सुंदर सुंदर और भजनों के साथ। फिर कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे।

और ये जरूर कहूंगा कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस, अन फैन दाख्तु खवेंस।

0: कभी तो हंसाए।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस बार कसमें वादे प्यार वफा, फिल्म का नाम

समय के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, समय के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, क्योंकि दुख के बाद ये है कि समय बहुत कम है, और खुशी के बाद ये है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए वक्त मत गवाओ।

मेरा यार मेरी जिंदगी, फिल्म का नाम ज़मीर, फिल्म समीर से ये सुंदर सा गीत हमने यहाँ पर आपके लिए पेश कर दी है। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते,

उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। घर बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। इस बार सुनेंगे चलत मुसाफिर मोहे ले लिए। फिल्म का नाम तेरी कसम, नहीं तीसरी कसम होना चाहिए।

फिल्म तीसरी मंजिल से ये सुंदर सा गीत आपने सुने। इस बार सुनेंगे लागा चुनरी में दाग, दिल ही तो है। ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है 1963 में।

कितने कमाल के साज और संगीत पे हमने सुंदर सा गीत सुने और फिल्म का नाम दिल ही तो है जो, और इस बार हम सुनेंगे झनक झनक तोरी पायलिया।

तुझ बिन जीवन कैसा जीवन, क्या दर्द भरी बयान इसमें हमने सुने हैं। फिल्म का नाम बावर्ची, 1927 तक में ये पिक्चराइज किया गया फिल्म है। शीशा कमज़ोर होते हैं, शीशा यानी कि आईना कमज़ोर बहुत होते हैं, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमेशा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो, ये सोच कर कि इस दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान और लोग भी हैं।

पूछो ना कैसे मैंने रहने बिताई, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का नाम।

चाहते हुए भी कुछ राहों से गुजरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कुछ राहों से गुजरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी अपनों के लिए खुद को ही भूलना पड़ता है। ये ज़िंदगी ऐसी होती है दोस्तों, ये ज़िंदगी ऐसी ही होती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबसे बड़ी उदाहरण है हमारी सांसें।

सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी संजीव सचदेवा से ये इंस्ट्रूमेंटल हम यहाँ से सुन रहे हैं। आपके लिए पेश किया जाता है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से जो लाइव एंड डायरेक्ट आपके कानों तक आपके घर तक लाया जाता है।

कहते हैं कि कम लोग हो पर अपने हो, कम लोग हो पर अपने हो, जिंदगी तमाशा थोड़ी है कि जो भीड़ चाहिए। और जो दिल के ख़ास होते हैं, जो दिल के ख़ास होते हैं, वो हर लम्हा आपके पास होते हैं। आपके लिए यहाँ से सुनाएंगे अलीसा चुनोई जी ने कि मेड इन इंडिया।

मेड इन इंडिया सुनाई हमको अलीसा चिनाई जी ने। और यहाँ से आपके लिए एक बार फिर खूबसूरत गीत चुन कर रखी हूँ कि चांदी की साइकिल सोने के सीट क्या बात है।

जी हाँ, आओ चले डार्लिंग, चलो डबल सीट। फिल्म भाभी से निकाला गया है और सुनाए हमको नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल जी, और म्यूजिक डायरेक्टर इसमें है अनु मालिक जी।

आप साथ साथ कई गाना चलने चाहते हैं, पर वही चलेगा जो यहाँ पे इशारा होगा। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। ये थोड़ा गंभीर है पर सही है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। और मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार

बार हम सुन रहे इंस्ट्रूमेंटल सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। वही मशहूर इंस्ट्रूमेंटल संजीव सचदेवा के आवाज में। और यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं सुनने के लिए कि मदहोश दिल की धड़कन, लता और कुमार, लता मचेशकर जी और कुमार शानू की आवाज़ में।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम है। हाँ, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम है। नेखंतीन अख्तन नेखंतक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। और सुनाए हमको लता जी और साथ में सोनू निगम जी, नहीं सोनू निगम नहीं, कुमार शानू जी। जी हाँ, सुनने वालों, लव इज इन द एयर। ऐसे कई दिलों हैं जो खुश में हैं और प्यार में हैं, प्यार में भरे हुए हैं। यहाँ से हम सुनेंगे हवा हवा हसन जहांगीर की आवाज़ में।

रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते कभी न बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। रिश्ते कभी न बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से दुनिया नहीं बदलती, बस जीने के बस जीने का अंदाज बदल जाता है। कहती हूँ कि रिश्ता उसी से रखो जो खुशी से तुम्हारा साथ दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है।

कितने अच्छे फरमाए कि यार के हर खुशी हम सब की हर खुशी। अभी जीत जी ने सुनाए एल्बम का नाम है तेरे बिन।

है कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, बस दूर होकर भी दूरी ना लगे इतना सा रिश्ता बनाए रखना। हर पल में हर पल का आनंद ले मेरे प्यारे सुनने वालों, हर पल का आनंद ले, खुशियाँ कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरी जीवन कम पर जाएगी। यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं सुनने के लिए पोस्टर लगाओ तो। पोस्टर लगवा दो बाजार में,

तेरे मेरे बीच कुछ आखरी नहीं है, तेरे मेरे बीच कुछ आखरी नहीं है, सिवाय सिवाय आखरी सांस के। पोस्टर लगवा दो बाजार में फिल्म का नाम अफलातून।

फिल्म गुंडा राज से निकाला गया ये गीत। ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको, ये बहुत गंभीर है फिर भी, कि ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों का पसंद तो पल भर में बदल जाता।

के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाव में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं।

फ्रॉम द मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज लो मैं आ गया। अनिल भीम प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, माँ जय अंबे माँ रक्षा करो।

माँ जय अम्बे माँ रक्षा करो, अनिल भीम जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। खुशियाँ उनको मिलती है जो देते हैं सबको खुशी, किसी को करते नहीं दुखी। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी लव इन कनाडा।

लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, खुशियाँ उनको मिलती है जो देते हैं सबको खुशी, किसी को करते नहीं दुखी। फ्रॉम द मूवी लॉफिन कनाडा से हमने पेश किए हैं। मनहर उदास जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेजुबान से। आप सुनेंगे, दिल जलाते हैं ये बरसात सनम तेरे बिना।

मनहर उदास जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेसुबा से हमने पेश किए है दिल जलाती है ये बरसात सनम तेरे बिना। सुनने वालों कुछ मिले जुले गीत के साथ हम आप सभी के सेवा करने वाले हैं, तो चलिए ये गीत हो जाए येसुदास और हेमलता जी की आवाज में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी दुल्हन वही जो पिया मन भाए।

खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। यीशुदास जी आपको सुनाने वाले थे, साथ में हेमलता जी फ्रॉम द मूवी दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सुनने वालों, जबकि खुशियाँ की बात होती है तो ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते, फ्रॉम द मूवी मन से आप सुनेंगे।

0: आप सुन रहे थे खुशियां और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है, उदित नारायण के साथ में अनुराधा मौलवा जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मन से हमने पेश किए हैं। मधुबन खुशबू देता है।
1: वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें।

अभी आप सुन रहे थे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। यीशुदास जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी साजन बिना सुहागन। चुप चुप के है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आया रे।

आया रे फ्रॉम द मूवी चुप चुप के, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं कुणाल गंजावाला के साथ में सुनीरी चौहान जी आपको सुनाने वाले थे जाने दिल में कब से है तू, फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे। लता मंगेशकर जी के साथ में सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

लता जी के साथ में सोनू निगम जी आपको मिलकर सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे। जाने के दिल में कब से है तू, चलते चलते है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दुनिया के सौ रूप सारे निराले, अलका याग्निक और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

दुनिया के स्वरूप सारे निराले। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी चलते चलते जब वी मेट। जी हाँ सुनने वालों, जब वी मेट है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मौजा ही मौजा। मिक्का सिंह आपको सुनाने वाले हैं।

0: बच्चों, तुम्हारे माँ बाप बड़े शैतान हैं। इन्होंने बार बार झूठ बोला, मगर मैंने पहली नजर में पकड़ लिया था, है कि नहीं?
1: जी दादी।
0: देखा वही सच निकला कि नहीं?
2: जी दादी।
0: अरे बच्चों, हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता, एक झलक काफी होती है ये पहचानने के लिए कि लड़के और लड़की के

फ्रॉम द मूवी फिजा से हम यानी फिदा से हमने पेश किए हैं दिल मेरे ना और इंतजार कर उदित नारायण के साथ में अलका याग्निक जी आपको सुनाने वाले थे। क्या दिल में कहा दत्ता तल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते उदित नारायण और अलका।

क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना? उदित नारायण और अलका याग्निक आपको मिलकर सुनाने यानी सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्या दिल ने कहा। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। सोनू निगम के साथ में श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी क्रिस से आप सुनेंगे।

नाव सुनाए प्यार की एक कहानी अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी क्रिस से हमने पेश की है सोनू निगम और श्रेया घोषाल आपको सुनाने वाले थे। आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है फ्रॉम द मूवी अंदाज से हम पेश करते हैं उदित नारायण और अलका यज्ञित साथ मिलकर सुनाने वाले हैं।

आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। फ्रॉम द मूवी अंदाज से हमने पेश किए हैं उदित नारायण और अलका याग्निक आपको मिलकर सुनाने वाले थे खूबसूरत। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में तुम्हाने या माने यानी तुम्हाने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति जी आपको सुनाने वाले हैं।

खूबसूरत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किया है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में, मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में। कोई मेरे दिल में है, जो भी है वो क्या है बताओ क्या, नहीं बताने वाली।

मेरे दिल में है जो भी है वो अपना सा है। अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल में है। अनुराधा पौडवाल के साथ में कुमार शानू जी आपको सुनाने वाले थे। अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी क्या यही प्यार है, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना।

क्या यही प्यार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश किया है अलका याग्निक और बाबुल। सुप्रियो की आवाज़ में मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। अलबेला इसी फिल्म से हम पेश करते हैं अलका याग्निक और बाबुल। सुप्रियो मिलकर सुनाने वाले हैं सर से सरक गई क्या तेरी।

अभी आप सुन रहे थे सर से सरक गई तेरी चुनरी, फ्रॉम द मूवी अलबेला से हमने पेश किया है अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो जी की आवाज में आप सुन रहे थे। तुमसा नहीं देखा, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुझे तुमसे क्या है, आप खुद सुन लीजिएगा।

तुमसा नहीं देखा इसी फिल्म से हमने पेश की है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी रन इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए दिल का करार ओ मेरे यारा।

अभी आप सुन रहे थे तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक और कुमार सानू आप सभी को सुनाने वाले थे।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी हमारी हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। सभी रोजादारों को हम माह रमजान मुबारक बारी पेश कर रहे हैं। Have a blessed day until next time.

Kala na jane unch nich, kala na jane jat, Saraswati Mata dijiye humko apni aashirwad. तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अनाम सत श्री अकाल जी। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश का समाचार सुनाना है हमारा

इस चून से आपको पता चल चुका होगा कि हम आ गए हैं अपना देश और विदेश की समाचार लेकर।

दोस्तों हम तुरंत चाहते हैं अपना सूरीनाम की ओर। भैया आप लोग को पता है अब पाकिस्तान में या कहीं कोई और देश में या कोई फेस रहे भाई, तो आप लोग जरूर यूट्यूब पे देखा होगा कि सबन बंदूक लेके लॉसेस खुद दागे हैं। हाँ, फॉर द फेस दैट इज फॉर प्लसीर दून से मैं से, तो उस सबके पास बंदूक रहे तो लॉसेस खुद दागे और फेस तो हुए और नाचे है दत है बवे अंता लंद इस दत वेल मुख लग मा इन सूरीनाम इस दत नीत मैं से नहीं दार इस स्ट्रेंग फरबोद तो ऐसे भैया एगो फेस रहा ब्रॉन्स वेक ब्रोको पोंदो में और फेस वाला क्रूतु ओसो कोनो क्रूतु ओसो भैया लगे हुआ पे फेस बे क्रूतु ओसो तो हुआ करो जगह के नाम है क्रूतु ओसो हुआ फेस रहा। और ये बात हुए हैगा कि फेस में भैया रात के आदमी दागी से पिस्तौल स्टूल और उसको दागी से भाए, तो यहाँ पे बताए गए हैगा एक बारे में सबन अनखिफ्त कर इसे सिपाही आए के पहुँचे ले ब्रॉन्स वेख के और जब गए ले हुआ ते को द्रियन ट्विन तक यारख एक आदमी के पकड़ी से जेकर पांच पिस्तौल रहा। हाँ, और बोले है ओफ थ्रीड कलर ऑफ फिर वेत से और बताए गए सिपाही एक पकड़ी से गया और एक लगे पिस्तौल मिलल है लाइओ ही मिलल है एक पास एगो करिया ओतो फोर्थ रेप्टर रहा जो रेस्टिंग क्लास क्रीक में उजात रहा बस वह खरीद चल गया हुआ। और बोले है ओकर बारे में डायरेक्ट सिपाही कंट्रोल कैसे क्लास क्रीक में और फोर्थ रेप्टर वास कंट्रोल पोस्ट अने स्टांडक होदे हुआ पे सबन कंट्रोल पोस्ट पे के रोकी से और सिर्फ येर करी से कर पास इतना वापन पाई से और बोले है द इंसिडेंट वेयर द फॉक्स ओवर खदराखन नतीलक मेन से। और यरेमिया का बोले बोले हम अपन पिस्तौल वा धल्ले रहली अने आस बोरख कहीं पे यहाँ तेज इस ऑनर फॉर क्लार दैट इट अनकट्रोफन फिर वापन फन हेम वास ओकर बा और फॉर क्लार करेगा कि आस ऑनर पांथ मुके धल्ले रही तेज अन खोकन ते अबराब रुकी में खोक होत रात ओके अंदर पान थम दलेरी के जीत अपने पिस्तौल वा पाया अब ले फरदाख्त बकेंद दन आदत है तेजे सर फीस स्कूटन इन लुस हाथ खलोस ना दन इन फीस गांगर हिम दत सो हेबन गफरा। De politie van de Bronswerk zet een onderzoek voor, maar hier na liggen he, kieuw illegale raak, kieuw legale pistool lab hai, lekin hua na soma Suriname me, jese Middellandse Oosten me, Pakistan or kahin kahin die stuwe, se van je face kere he, dan doen ze dat mense, aise he. अब देखो भैया सूरीनाम के सिपाही जो है ना सबके बोले ला बड़ा स्लेक्ट रिपोर्टाज है उस सब कहेगा उस सबके भैया बड़ी बड़ी सिपाही के पकड़ा है। अब देखिए यहाँ फिन तीन सिपाही पकड़ा ने भैया हाँ स्कोतू भाई स्कोतू आदमी लोग के पेस्तक कर ले रहा जाने तो कि हमें इतना पैसा दे तो सखुआ हम दाब देवे तो सखुआ हम दाब दे चुकू ले भैया पैसा ले हैगा। तो यहाँ पे बोले हैगा तीन सिपाही के सबन पकड़ी रहेगा फॉर अफ पेरसिंग ये बातचीत हुए हैगा एगो है पुलिसिया खैन एस्ट क्लास के दूसरा एगो ब्रिगाडियर है और दर्द एगो अस्पिरांत सिपाही श्री नाम इसके है और बोले हैगा स्ट्रफ रख लग ऑन सुख पहले ना अन आखिफ्त फन ऑटोमोबिलेस एगो गाड़ी चला आदमी गली सबके ऊपर नालिश करी से तब ले स्वास्थ्य स्टाक बतरेफ के उसको तो इस क्लास के राव ब्रिगाडियर रहा 6 तारीख यूली के एक पकड़ी से फॉर अफ पेरसिंग तो अफ पेरसिंग के पकड़ी से हुई पकड़ी से दोस्तों तो यहाँ बतावे गए हैगा कि बताए गए है उदयन अनमिया के पेस्त करी से तुई पुलिसिया दी इन बसित वास वा इलिखाल फेस फिर वा ओकर पास एगो इलिखाल पिस्तौल है जेन अनखिफ्तो करी से आ इस कौतून ओकर लगे इलिखाल पिस्तौल वा पकड़ ले से ले ले से और ओके बोली से जे तू हमें 2.5 अमेरिकन डॉलर दी है तब बोले तो सखवा हम दाब दे बोले कुछ ना हुई। अब ये मियाँ के पैसे ना रहा 2.5 तो ओके ना भरी से तो इस पिस्तौल वा ले ले से भैया सऊदन अखेंद फोर्स आनखीफ
$2,500 eis kerise. De man had de geld niet mensen ujun ke pas pistool war ha. Vier wapen was van beslag kerise ga. Skouter a skouter pistolen door op hese beetje deze bhaai. Vermoeden dat het beslag genomen wapens later is doorverkocht. De man deed daarop aangifte keris politie weer om mee. Apitino ke pakar ke ban kerise ga. OPZ openbare minister beslist over de verder verloop van de zaken te scotulen via als hij te openlijk chukumange ke to etrapaisa deed hem to sakwa daap de weer. Ab deko ego admi via ego oudsipahik pakri se 27-jarige aspirant agent ke servier kerise go auto chauffeur automobilist ke bole hem 400 SRD de te kuch na bata iske kunch bhai lam ke eke bhi 400 bhari se automobilist wa baki aramia bole na बोले तो हम जब आंखिफ्ता करे तो कि जाए के आंखिफ्ता करी से और एक के भी सीफ ने तो इंतज़ार किया रखे स्कोटू के पकड़ ली से तो जोन आदमी जोन सिपाही तो और कमरात है भैया जिके सोचिए हम काबुले हैं हम विश्वास करी ला हमें फैला खैर करी वही तो के इसे भी चीज करी तो सिपाही पे कैसे विश्वास करी भैया हम ना बोले ला मौसी लो उनकी सब स्कोतू है मासाइड बहुत ढेर हुई गए सूरीनाम दी इसमें सिपाही लोन भाई जोन ये चीज करे अब देख एक आदमी का और बात है आज एगो गाड़ी जा है भैया और ब्रोफिस पे दुई मिला जा है तो दुई मिला ब्रोफिस पे बैठल उतुआ वाला अनमिया रुकल है और शुक्रवार के शुक्रवार सुफ्राइडा 24 के वो रिसेंटली दी दी शुक्रवार के ब्रोफिस पे दुई मिला जा है और फोर वेरबेड 21 के को आदमी के नाम बा ब्रिंसले लियोनार मर गए भैया 5 तारीख के उके लाठी से मारी से भैया और फरकेर में हैली से 7 तारीख फिर यूलवेटन दथे से 100 अनमेलन तो आप एक स्कोतु खोजे है जो अनमिया लाठी से तो हुआ मसे निकल के मारिस ब्रोफिस से वाके ते स्कोतु से बोले है बोले कि हम अबे ना आबे बोले हम जाएला पहले अपरे के वासी करवाबे तब आबे तो के मेल द करबे एक के कोई ई सिपाही बोले ना बोले हम तो के ना हो अब के कब तू वासी हुई है तब तू हमार लगे ये बोले हम लोग आयला तो के लेवे तो एक के गेल खोजे तो एक के ना पाई से भैया ते बिहान भर अपन अफोकात लेके और जाए के मेल द करी से गा द फरदख्त वेर द अख्त नीत अनकट्रोफन और बोले है गा अनफोकात के लेके बिहान भर गए ले वेल तो मेल द करी से गा और बोले है बाय द फोरलेगिंग हियर द फरदख्त टूगेगिवन दैट हे द ब्रोफिसर एंड द अदर पर्सन मेट द फोरवेर्प स्लागन हैव टूगेब्रक ऑन द योहानस मुंगरा स्ट्रैट तो फरकीर में भैया सब लाठी आठी लेक भी चले हैं अब फरकीर में भी तो कुछ बोलना पाइयो भैया नहीं ऐसन तैसन आदमी लाठी लेक आयो मारी बस मर जाइयो भाई और तू जाने हैगा फरकीर में भी कितना गड़बड़ है देखो दुई प्राणी क्यूबा के लड़ी से दोनों प्राणी भैया घर में वो लड़ाई भइल है इसलिए खबर कि औरतियां निकार के कुछ चोक चीज से अरमिया के भोग दी से भोग दी से वो अरमिया के जाय के परल अकादमी सिकन है इसमें सिपाही जाय के पहुंचल है तो वो सोचे ऊपर फाल भइल हम दा तू जाने सरनामे बड़ी जोर ऊपर फाल हुए है अब बता और तो सोचे ऊपर फाल भइल है तो जाए के पहुँचो में ब्लैक भइल हैगा कि औरतिया रमिया में झगड़ा भइल है तो औरतिया ओके भोग दी से औरतिया को तौलक ली से गा कि स्कूतों से बतिया सिकला ओम तो क्यूबान रहा खैर फ्लैट की सिपाही पहुँचल है तो अनमिया का बोले है अनमिया बोले हम सखुआ बोले त्रक त्रक करेला बोले हम अपन पार्टनर के न मांगेला क्यों बन हुए बोले हम सखुआ त्रक त्रक करेला द मन अन दैट हे हिंस तरफ रख लगा vervolging tegen zijn partner wens. Toen bichara bahut achcha admi dekha hai auraton ke chhuri bhonki se ya kuch bhonki se aur unana mange ko kar aurat pakdai ke ban hue to
ये बात है दोस्तों, आप लोग जानो है पालू का फोर्थ सीटर राम नंदलाल है। राम नंदलाल NDP में संगे हरदम काम करी से अपोही रमिया कृतिस बतिया है। बोले वे हेबन कफूल की ई रखे रिंग जुर्मा ए प्लेटफॉर्म फॉर अख्तर जा है। बोले है का प्रेसिडेंट हाथ बोले बलूफ कर ले रहा सिमोन। बोले कि एम सिस्टम हीला माल बदला। बोले मोकिंग का सिस्टम मा बोले हैगा। बोले फीस प्रेसिडेंट प्राक आन आयु पासी ओग द पालू हट को हो द देश रखेरिंग फरांदरिंग सो बरेंगन। मा बोले कुछ ना होवे है रामदनलाल। बोले हैं अंदर फोर्सिटर है पालू के और बोले तीफंस ने खवीसन देना लिदबा। बोले इन प्रोग्राम सिनवेब में बोली से और रामदलाल स्टीफ क्रिटिक लेफर कर इसे रखेरिंग्स बलाइट के ऊपर पार्लियामेंट के और बोले हैगा कि DNA का बोले जो DNA का नेशनल असेंबली है बोले फरखादत ओवर द बखरूतिंगन कुनर वे सेगन दैट वे क्वा डेस्कुंदिगेट स्टेपन अखतरुइट आन हेट माकन सेन। बोले हैगा जो समय पे इसे स्टार्स बखरूतिंग के बारे में बताओ तो बोले प्लेटफॉर्म फॉरइट इसे अखतरुइट जा है डेस्कुंदिगेट के बोले चलाकना है बोले न जाने उसे पूंछ करे है। बोले ओन्स द हम दैट फरांदरिंग इज बिलीव सीन विद दैट द DNA आन हेट टेरिफॉलन इज इन एन ओल्डर मैनर फ्रॉम केकन हु इन दिस लैंड सोदन मूटन बस्टुरन एकर बारे में पालू का अंडर फोर्स राम नंदलाल बोले है और बतावे हैगा कि हेड फॉलक्स टेम कंटिन्यू अंडर्स ऑन फरखादरिंग ते ब्रेंगन मार एंडलेक ब्लेक दस फॉर द हेक्स एंड होल्डन फॉलक के क्रिटिक हैगा। बोले बखरोचिस बांधलिंग में इबान बोले हैगा अंडर फोर्स इधर फंड पालू और आल्टे टू NDP के और ऊपर से नाम में भी बैठल है। Een belangrijke punt van de kritiek richtte zich op de wijze dat de Nationale Assemblee Ram Nandelaal parlement volgens hem onvoldoende diepgaande en technische onderbouw te werk gaan. Begroting en tekort in discussie over kritiek op transparantie en verandering oproept tot politieke consequenties. Oriezebaan Nandelaal, Bolihe, Hamari, Piari, Piari, Genta. तो अब देखा जाए दोस्तों और क्या हो रहा है भैया। फिन रूफ ऊपर फाल भैले 2000 euro 17,000 SRD और जाए के ई भैले कैनेडी वेख में और ऊपर सो मार ना जाए के क्वालिफिजेट एरफारिन चोर लोन है डाकू लोन है जाए के लूटी से सनिचर के भैया 8 बजे रात के और अतवार के 5 बजे हैं ओमस्ट्रिक 20 यूर एंड सोंदा ओमस्ट्रिक 5 यूर के बीच में भैल हैं और एक बारे में सिपाही ऑनर सुख करे हैं और चोरी भैले भैया उतरा पैसा ऊपर से यहाँ बताए गए हैं ऊपर से या खबेर भी चल गए हैं बे इन बराक में से। तो ये सब बात है भैया। बड़ी मछली मरल है सूरीनाम के रीमा में सरमाका में और ब्रॉन्सवेग बेनलांस से आयल है ब्रॉन रिफीरन से मछली मरमर सब उतरान है गंधात है सूरीनाम देश में भाई। तो बताए गए हैगा कि एकर बारे में जो सूरीनाम सबसे खुरुस्तल लंग तरवीरल थे बैना भैया जहाँ पे बोसन है बियोडिफ्रिजाइट है ब्रॉन वाटर है ब्रॉन रिफीरन है और बोले लीफस आदर है लंग स्ट्रोमन खून है बोमन है और बोले इतना मोई खसम देश में इतना मछली मरे है फेस स्टेरफ तेन सरमा का रिफीर। बोले हैगा ही फील इमोशंस लॉस कलाते मैं से लॉस कमा जनता जो ने बहुत सोचे है एकर बारे में और बताए गए हैं मार ओम हिंद फुटसल उस सबके ड्रिंक वाटर कल्चर इतना मछली मरल बोले का भैल सब में। तो बताए गए हैगा द ए नोम
कायानाई दे अंदरे क्विक भैया जैसे सोना सबन खोजे क्विक उस सम उरीबा में सबन लूज करी वार्डन उतरा मछली मरल है भाई बोले यस दारम इस खुद दैट वे बोले एनमा किस फॉर फरफेलन द ऑन द सुक के बारे में अभी के सबन ऑन द सुक करी तो लो जानो कितना ढेर क्विक भी स्कोतो के द्वारी पसे चोरी भइले एकर बारे में कभी ना पता मिलल कि कोई पकड़ान है कि ना पकड़ान है। तो दोस्तों terwijl de discussie zich nu vooral richt op onderzoek van deze ene vissterfte dreigt een veel grotere werkelijkheid buiten beeld te raken ki hum log ke jo riba hain barisan se bol onder druk ba alleen sharma ka rivier mein marwaine rivier lava tapan honi ka panama mein water weken worden al jaren lang beïnvloed door intensieve godwinning sona jon khoda hai jungle kata hai sab hum log ke desh ke barbaad हुए भैया क्विक से सोना से और बोले द हाउथ कोर्स लीवर सेकर इनकमस्टन ऑप सोनवा मिले है इनकमस्ट आवे है बाकी बोगदम जो ने एरस्ट हम लोग के फरफेल हुए है हाउथ का बोले बॉस बस्ताद नीत अलीन एट बोमन ओक द बोगदम लीव्ड बोले वने द यार लंग वर्ड ओपन गegraven en vervuild raakt uiteindelijk hele ecosysteem aangezaagd, water, vis en dieren, uiteindelijk ook de mensen. Toen itera, ze hebben zona gehad in paisa gehad, hem loke milieu vervuild hoe we waardoor itera machiri, pani, machiri ze mre he, oro, bataye gehe, ki hem loke jungle jon he, सफर फेल हुए है हमारी जनता। तो हम जाई भैया रुसलान की ओर हम जाई है। तो 6 तारीख जुलाई के 9:30 के न्यूज से ओली राफिना द रेज जो रुसलान में बा उकरीना ड्रोन से फिन दागी से भैया ड्रोन से फिन दागी से बहुत बड़का स्काद भैले ड्रोन आन खतरोफन एन फन दी ग्रोस्ते राफिनार्द रही है भी भैया। और बताई गई है कि इतना बसकादक भैले उधर यानी कि रुसलान यानी कि हुआ के जनता के मारे है और इस हुआ के रफिनार रही दागे है कि इतना होइगे कि देश में आ तेल ना रहीगे भैया अनमिलों रई में खड़ा हुई तेल कीने हैं। यह बताए गए हैगा ब्रांस्टोफ क्रिसिस इन रुसलान उक्रेन से ड्रोन अनफालन सोर्खन फॉर ब्रांस्टोफ क्रिसिस इन रुसलान। तो ऐसे बातचीत है हमारे जनता तेल के बारे में रुसलान में इतना हुआ पे प्रॉब्लम है। तो हमारे जनता एगो चिनुआ है अमतनार है ओके दो तरफ मिले चीना देश में दो तरफ और चीनीस अमतनार जो 285 मिलियन यूरो इन सख्स तक चोरी करके पर जेबीम धरे रहा भैया एगो अमतनार है खमीन तक के करप्सी होके बहुत जबर करी से और बोले फर और दिल फर वी का करप्सी नीखरन सस्तक यार है एगो अमतनार है फिंचिनार से अपरे के इतरा फर्रेक कले रफिया मख्त मिसब्रेक से वित वास कर रहा फर जैस्टर कर ले रहा देर तक यार ओम खरीकन है सो ओवर देर प्रियूर फन देर तक यार कर ले रहा भैया सबन जोरिस 285 मिलियन यूरो हैवन आनगेनोमन उत्तरा करप्सी उलेसे vanaf jaren 1993 tot 2023 और ओकर फंक्शन रहा werkzaam in de oostelijke staat Nanjing में gedurende deze project bepaalde bedrijven को contract दे वत रहा चुकू लेले contract दे वत रहा और बोले grond en financieringen hebben verschaft in ruil voor geld en dure spullen ik er waren met Chinoa
media liekje ze tegen 69-jarige man heeft volgens Staatskrant China Daily de doodstraf gekregen vanwege de extreme hoge waarde van de steekpenningen, bullen de bijzondere ernstige omstandigheden en de enorme schade die het land heeft toegebracht. Mensen, de Chinoandese met doodstraf hebben ja, oude de rechtbank heeft opdracht gegeven tot de inbeslagname van alle persoonlijke eigendommen van de man. President Xi Jinping begon na zijn aantreden in 2013 grote anticorruptiecampagne. Veel onderzoeken eindigen met disciplinaire maatregelen. De Suriname Kahina Hoise

चोरी करे है सब होवे है हमारी जनता। अब देखो बल्किए डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका के जीत गए फिर इनसे भैया फुटबॉल में, और जो फुटबॉलर्स बेल्जियम के हैं अब अमेरिका इसकाकल हो गए हैं, वो सब नाचे हैं फेल पे जैसे ट्रंप नाचे भैया यहां बताए गए। बेल्जियम इज इन एक्सैक्ट इन एक्टास एंड ही तो बेल्जियम इज नॉट इन फियर ऑफ द अमेरिकानसे अक्सर फाइनल फन वीक का फुटबॉल में गए है और बताए गए है बेल्जियम नाची से भैया हुआ सब स्पेलर्स फुटबॉल फैल के अमेरिका में जैसे त्रिम्ब नाचे है। तो बाल के बारे में बहुत है बताएंगे दोस्तों, और यहां बताए हेत से लानबो ऑन द ड्रग मन नीदरलैंड ओक हाउट फॉरलूपिक स्टंप मैन से हेत भैया बहुत हेत है। तो जो सौदा पानी यहां लगे हैं इन फ्रांकरिक इज स्कांड अल सिख बार नीदरलैंड के आलू प्याज तरव लेकिन वारम तो न खुद तो दोस्तान मर्द तुकोम्स इस ओन जी कर मैं से। तो ये बात है हमारी जनता, आप लोग को एक गीत हम सुनाते हैं।

तरसाई तो एक गीता आप लोग को हम सुना दिया है। हमारी जनता, हमारी दोस्तों, हमारे मित्र, तो हम चलते हैं यहाँ पे अब्राहम्स। आप लोग जानो अब्राहम्स के, ये वही अब्राहम्स हैगा, एनडीपी के अब्राहम्स हैगा। तेईस से रिफोल्यूशन हाथे डील करूँ मैं सामने में बहुत से एन है इस एनडीपी बहुत उसके रेखतर हाथ है और बुढ़वा हो गए है रमिया, लेकिन अक्टिव बेस है फन अलस है नखवा।

दोस्तों एक दो समाचार आपको हम आउट सुनाएंगे तो अपना प्रोग्राम को हम खत्म कर, तो हम चलते हैं एक दो समाचार और आपको हम सुनाने भैया सूरीनाम देश की ओर हम फिर जाते हैं और वहां पे भैया सबन जबरदस्त अक्सी करी से गा क्रिमिनलिटी के बारे में सिपाही और गैल हैगा इस सब काम बोले हैं ढेर सिपाही गैल अक्सी 3 जुली के शुक्रवार के मेरद लोकांशी पर हमारी बो में सब गैले हैं लोकांशी राम गुलाम में गैल है चोरन चपाटी के मिस ब्रोई के बके कोई के ना पाई भैया द हॉट सॉक्ट फरदाख्त से तेज द एक्शन नीट आनखत्रोफन तो ये चीज भैल है सूरीनाम देश में असम बिना बेप के बोले बखरोतिस तो कोर्ट एन इन्फ्लेशन टोनन आन द इकोनॉमी नोग आल्टेड क्वेट्सबार इस ई बात बोले असम बिना माक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ब्लाइव सर्कलर फोकस ऑफ होगरे स्टास इनकमस्टेन मार इफेंस इफेंसेंसी गफरा फर्स्टरगन फन बलंगरेके इंस्टीट्यूट के बारे में और जनता हिया बताए गए है और सब ताशे हुए तेल सूर के भाई तो जाने है का समा खास वेशल नेटवर्क लगाई से तो यहां बतावे है का दर्द सब ताशे चार रोज में भइले तेल सूर सीट स्कादा एंड खास वेशल नेटवर्क अपलोपन बोले हैं फंडलिस्म भैया सूरीनाम देश में तेल सूर दुलवेट को वर्डन फंडलिस्म इंदिरा गांधी वेक में भइल है लिफोर्नो बीक है इसमें भइल है टेलीकम्युनिकेशन जींस टेलीसी स्प्रेक फंड सॉर्फ वेकन बोले $3,000 के स्काद भइल उ सबके खास वे इस काबल के बारे में ओ बतावे वे दून व्हाट इज ऑन मख्त ले बोले है सबोटाज से सब करने माटे बोले है इन सामन वर्क में औतरे बफुकताई एक्शन प्लान burgers op alert te zijn verdachte activiteiten in de omgeving van de telecomvoorzieningen. Toe je baat hebben ja, is heb kabel wat kaartdewe he. Doorgeknipt kabel betekent niet alleen duizenden dollars aan herstelkosten, maar ook ongemak voor klanten en vertraging van de ontwikkeling van ons land. De infrastructuur is niet alleen investering van Telesuur. Deze kabel was gewoon kaart de weer. Ja. De kontje te bereiken. Yo. Kutje bereiken. Nakker bij jou. Toe je baat. Op de ko, ego 25-jarige Amsterdam. Ke admi. Vorige week augustus. Met nationale monumenten op het dampen klaar te openlikken. Again is now. ऊपर कुछ फिर फीस लिख दे ओके सिपाही पकड़ी से और फॉर द रेक्टर लेगे ओके चाहेंगे 895 euro कॉस्ट भरे के फिर फिया निकारे के फरवेदर कॉस्टन बोले हैगा द प्रो पैलेस्टाइन डेमोस्ट्रेंट स्पोट ऑफ 16 ऑगस्ट में द रोड द फेरफ ऑफ द लूज नेवर अगेन इज नाउ नोइट मेर इज न्यू तो दोस्तों चीना में नोटवेयर भइल है नोटवेयर इन चीना सीकर 10 मने हुआ मर गए हैं और बताए गए हैगा अन मंगलवार के देशदाख के भइल है ओमखेफे नोटवेयर दैट इन मिडल एंड ज़ाइडन फ्रॉम चीना ट्रेफ्ट इज अनड्यूडलक फॉल्क्स द बरिखतन फ्रॉम द स्टार्स स्पेस ब्यूरो यूं हुआ वर्दन द स्टीडन आनखत्रोफन दोर विंस्टोटन हमारे प्यारे प्यारे जनता तो हमारा प्रोग्राम खत्म आने को हुआ है

इस ट्यून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सत श्री अकाल। मिन से तुद फॉलो करने की चोनी नंबर वन है हमारा नाम।

0: कौन? पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बच गई हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम, एक हिदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग। पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्ण दत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार शाम का प्रोग्राम 12 जुलाई 2020 का यह हसीन शाम का प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारों, खास करके सरनामी संगीत लेकर, ये यशोमी लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो, घर पे हो, या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ शाम शुभ रात्रि पेश है। मैं ढील फील लोइस्टर ब्लेजीर के साथ पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम है पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमांडा टॉट फ्रेडा तेजन कंटोर यूर ऑफ द फॉल्कन टेलीफोन नंबर कंटोर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 070-362-2077। क्वालिटी सर्विस गारंटी के साथ पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो, नहीं तो फिर हैं उनसे क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूलती से ऑलवेज लेकर दरबै पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। तो उनसे पहले आप श्रोताओं ने कति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके रोज सीता बहन जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश की। जिस तौर तरीके से सदियों से रोज सीता बहन जी आप सभी को सेवा करती आ रही है, यह आशा उम्मीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनकी पेश हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तय दिल से धन्यवाद सीता बहन जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ वीकेंड। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो, विवाह संस्कार तो बीत चुका होगा, कंगन भी छूट चुका हो, गाना जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं हमेशा की तरह कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। हरिओम। आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, है आप एक मातम में हो गमी में, तो पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है, और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर बीती दुआ करते हैं कि आप सभी सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिल फील स्टेरक्त में दुआत बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए, यानी तो फिर खेत है जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, और पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, और हो सके तो हम लोगों के बारे में जरूर थोड़ा बहुत बातें शातें करते रहना। फनहार्त बेहतर खाप, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। कामयाब हुए हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां एंड नतीजा काफ़ूर और नेट सो खुदोर। और हो सकता है कि कल या आज आप कामयाब नहीं हुए हो, तो मूर्ख ईश्वर दख चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ फर्तराव थोड़ा और जोर तोर से बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी बंधु,
nooit opgeven, hè? Hebben we toch ook thuis op school, ook vooral op je werk, her en der geleerd. Never give up, brada, nanga, sisa, sosa, lobby, lobby, and blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dit is mijn prijs, weet wel, maar voelt hem gedrukt, zes, hoe zwaar het dan, fijne vakantie. Geniet van Europa natuurlijk, als je voor het eerst bent. En blijf luisteren naar Fahon Industani Radio. You're gonna like it. En dat meen ik natuurlijk ook. Over hoe ze kijken op bidee, jaar heel jatra, pejaar heel op zoek naar een ander soort warmte. Toch maar voelt hem gedrukt, zei Apko, bij ik shub jatra. Fijne vakantie. Tamam luk zijn te, Fahon Industani Radio. Op hun vakantieadres, internet, kelerdwara op hun tablet, laptop of smartphone toch abisoniem lopen, hè? Zo bent u en blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk Hamari Den Haasjerka, de one and only Fahon Hindustani Radio, 24 hours at your service. साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ। आईडी फिल्म ललकार निकनिंग टू इन से यूं तक कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्म श्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या चगा लो, मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदा ही कहते रहेंगे, अब तलीफ कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक सरनामी संगीत का प्रोग्राम। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, चटनीस इत्यादि इत्यादि, और दूसरे अध्याय में सिर्फ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, तीसरा अध्याय में फरासिंग नए नए सुपर सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना यारो, मजे लेते रहना। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, शेर शायरी है, तो चून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो हमेशा की तरह सरनामी संगीत साप्ताहिक प्रोग्राम आप सभी के खिदमत में। रफी साहब जी

आलो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। साथियों स्टूडियो की तरफ आते हुए तापमान तकरीबन 25 और 26 डिग्री के दरमियान था। देन हाँ शहर में और कुछ धूप भी निकला था तो मौसम तो बहुत ही मधुर है। तो आज का इस हसीन शाम जो आप सभी के नाम है शुरुआत में करने वाला हूँ हमारे सरनाम देश का जबरदस्त म्यूजिक फरमाशी मस्ती ग्रुप जब होरेंट टूर और स्पाइन टूर पे ये सब गए थे ना उन्हीं में से निकाला गया ये टूर का एक सुपर हिट सॉन्ग धीरे धीरे बहु नदिया मुकेश जी का गाया हुआ है अति सुंदर बयान फ्रॉम द म्यूजिक फरमाशी मस्ती ग्रुप।

शाबाश धीरे बहो ने दिया। मुकेश जी का गाया हुआ ये अति सुंदर बयान एंड म्यूजिक फरमासी मस्त्री ग्रुप पार्ट 9 कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप ट्यून है यार। रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 17 मिनट गुजर चुका है 5 बजकर। अगला बयान माएस्ट्रो केस जगेसर जी का गाया हुआ है अति सुंदर चटनी सॉन्ग सुना चिरैया।

Dan ontstaat de Kees de Gisser een hele gauw oude van hem. Je wordt juist een kalakar, maar Suriname Hollandiska. आठ मिनट बाकी है साढ़े पांच बजने में साथियों और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर साप्ताहिक प्रोग्राम रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत का अगला बयान ओकन हेल खव औस्तादों का उस्ताद और हमारे बैठक गाना का एक महा महा गुरु द ग्रेट श्री राम प्रसाद राम खेलावन जी का ये ज्ञान से भरी हुई ये बातें आप सुनिए और एंजॉय कीजिए।

शाबाश उस्तादों का उस्ताद बैठक गण का महा गुरु धवानंदौली स्वर के उस्तादों का उस्ताद दिगड़े श्री राम प्रसाद राम खिलौन जी। अगला बयान एक और जबरदस्त उस्ताद है हमारे डिस्ट्रिक्ट वानिका का धवानंदौली उस्तादों का उस्ताद बैठक गण का महा गुरु श्री हरि शिव बालक जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये कहानी सुनिए हम लोग का पुरखा पुरानियों का और कुछ सरनाम देश का इमिग्रेशन सॉन्ग बाय हरीश।

शाबाश शाबाश शाबाश। और उस्तादों का उस्ताद मैठक गान का एक महागुरु डवाने डोली मास्त्रो हरीशिव बालक जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप श्रोताओं ने सुन रहे थे। हम किफ फेल फ्रॉम द क्रेगन। तो दोस्तों घड़ी की तरफ देखता हूं तो 31 मिनट वेट हो चुका है, 5:30 बजकर, और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे दैनाश्चर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोड़ से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान सुनाने वाली है आप सभी को मशहूर गाने वाली हमारे ऑल इंडीज का द ग्रेट आयरिस चैतू जी का ये सुपरहिट सॉन्ग बोलावे रसिया।

शाबाश। बैठक गाने का एक महा गुरु माँ और जबरदस्त उस्ताद इन द वन एंड ओनली बी जानवती चैतु जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुन रहे थे। 14 मिनट बाकी है साथियों, 6 बजने में गर्म तो जोर तोर से होए, खास करके स्टूडियो में तो हमारा पसीना ही से छूट रहा है। खबर राम वालम बेच उपकरण खोए मायात हेल्प था हास नहीं दौर। तो आप भी जरा कुछ ठंड है कॉन्स्टेंट पीजिए और गडैया तना सीचल करिए तो नहीं बोले ऐ द्रोह हो सके। फिल ड्रिंक है अब सकते दिस या आई स्टे कोल्ड वाटर एंड आई वेट ओक व्हाट अंडर्स माय दैट से इट नीड लेट इट फॉर यू फॉर ए अगला बयान द बेट गाना एंड द चटनी क्वीन फ्रॉम सूरीनाम दे दे दे दे कुछ मड़ुआ मैदान यारो।

0: us, the Chutney Queen and the Bait Gunner Queen from Suriname. Ustad in Moti Mala Bola Singh Ji ke beautiful awaaz mein ye sundar bayan aap shrotaon ne sun rahe the. Aur dekha jaye ki is waqt Hollandis mein bhi apna tour de rahi hai. 8 मिनट बाकी है साथियों 6 बजने में, तो पहला अध्याय में एक आखिरी बयान और सुनेंगे, उसके बाद विज्ञापन. जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का एक महान फनकार, इंटरनेशनल कलाकार, उस्तादों का उस्ताद, बैठक गाना का गुरु, चटनी का गुरु, सब गुरु है, गुरु ही गुरुवे है. और इतने बच्चे को बहुत ही प्यार से संगीत सिखा रहा है यह महा जबरदस्त कलाकार, हमारे सूरीनाम देश का भाई समान दोस्त है, जिस पे हमें नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए. ये यार अनेकों तक में जब आया था हॉलैंडेस टूर, तो तकरीबन 6-7 साल तक हम लोग अपने म्यूजिक फॉर्मासी जो स्ट्रेंजर्स था उस टाइम, हम लोग यूरोप भर में थोड़ा बहुत कुछ देशों में ये महान संगीतकार के साथ टूर भी किया. और पास प्लेशर पार्टी में तो तकरीबन 6 साल तक हर एक साल बारंबार हम लोग ये महान उस्ताद जी के साथ काम किए. तो उसी ज़माने में ये रिकॉर्ड हम लोग भी निकाले थे. बाप रे बाप, खसोमडोर मास्टरो क्रिस राम के लावन और ये अरेंजमेंट है स्ट्रेंजर्स का, बैंड लीडर मास्टरो जेम्स शेखर शिव प्रसाद जी का, म्यूजिक बाय द स्ट्रेंजर्स. अरे बाप रे बाप,
1: पकिया तोरी अखिया और पति

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 12 जुलाई 2026 का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे पहला और दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का यहाँ से शुरुआत होता है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 3 मिनट गुजर चुका है 6:00। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी वीकेंड पेश है। मैं ढेर फील लजतर प्लेजीर के साथ टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोलो बिलो भी हम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतुलिक बदंत फॉर हेट लेस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइश से जरूरी खबरें इस तिहारे या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या आप एक इवेंट और खनिशातर हो और गमन हो या तो और गवुमन तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा करो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम को सुनते रहते हैं वर्ल्ड वाइड और देश विदेश भर तक आपके जो भी रेडियो का संदेश है लोग सुनते ही रहेंगे सुनते ही रहेंगे सुनते ही रहेंगे। और ये भी किफायत सस्ते दाम में आपका जो भी रेडियो का संदेश हो इश्तिहारे हो या तो कमर्शियल हो जो भी रेडियो का काम हो किफायती दाम सर्विस गारंटीड क्वालिटी स्टार्ट बाय ऑन्स ऑफ द ईस्ट प्लान। किफायती दाम में आपका जो भी रेडियो का संदेश है वो मात्र पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायती दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से ये कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और ओवल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आसमां कर तो देख बेल फमांडा तो फ्रेडा टेडेंस कंटोर यूरो ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 073562247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 073262247। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोग के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहदिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाएं। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है यारो। सभी जानकारी आप तार करे एंड नतुलिक रिसेंट है वो ओक उनसे एक करा ओक संकल्प वार हेल फिर अमरूपर्स एंड अमरूपस्टर्स ओक मेसिंग। तो जरूर आप हम लोग का सोशल मीडिया फॉलो कीजिए दान सिटी ऑफ होर्ती हेल बेन कॉर्ट वार फॉर यू लाइफ खान ऑफ ट्रेड ट्रॉन्स वेब पार केयर ऑफ खेड और एंड हेल फिर complimentjes al van luisteraars gehad. Dus volgende keer hopen wij dat u er ook bij bent. Sabhi jankari iske bare mein, kyunki aap bhi aakar is chota sa, mota sa jo faun hindustani radio ka parivar bante ja rahe hai, aap bhi aakar usme shamil ho sakte hai. Sabhi jankari iske bare mein aap taar kare, tainans kantoor, Europe 07-63-22-47 par, en vragen naar onze teamleider Maestro Johnny number 1. आप भी हम लोग का मेंबर जल्द से जल्द बने और को भी बनाए। पर के मुताबिक एक हिदम लेकर चलते हैं आप सभी को दूसरा अध्याय के तरफ हमारे सरनामी संगीत का। और एक जबरदस्त गायक जो कुछ दिन हुए है हम लोग को छोड़कर भगवान के पास चले गए महान गायक ड्रमर गायक बहुत ही दिलदार इंसान यारू का यार हमेशा नॉक स्टेट्स द वन एंड ओनली मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन ऑप्शन बेस्ट 1987 का लिया हुआ ये
opname in Reina Studio. En natuurlijk heel veel andere muzikanten ook erbij geholpen met dit groot product van Indian Diamonds die tijd. Vooral op de drum, etje van Pandero natuurlijk. Ik ben Chara bij Shahid Wahid Hussein.

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश इंडियन डायमंड्स दे आर एंड 80 अप सन बेस गाने वाले डिगड़े शहीद वाहिद हुसैन जरा मिनट गुजरने वाला है 6:00 रविवार का रात्रि का प्रोग्राम जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं 12 July 2020 का ये रात्रि का प्रोग्राम जो आप श्रोताओं के सेवा में डायरेक्ट हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो से आप सभी के कानों तक घड़े तक पहुंच रहा है। अगला बयान फ्रॉम द म्यूजिक फीलिंग वॉल्यूम 1 से निकाला हुआ उस जमाने के दियार एंड 70, 80, 90 का जबरदस्त गायक उस्तादों का उस्ताद नदीम खान जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान इन फॉर द बेस्ट नंबर्स naar mijn mening gezongen door deze maestro en ook heel erg arrangeerd door Jaro Kayar, Jigri Dost, Bhai Sharif Wahid Hussein. Jab tak maine samjha jeevan kya hai, jeevan hi beet gaya. Bahut hi feeling se gaya ye mahan fankar, ye Kishorda ka gaya hua jabardast song. Milke sunte hai Nadeem aur Shaheed ke yaad mein.

म्यूजिक फीलिंग्स फॉलिंग वन ने जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन ही बीत गया। खसोंगदोर मैस्त्रो नदीम खान, म्यूजिक रे अरेंजमेंट बाय मैस्त्रो शारिफ वाहिद हुसैन। हिंदुस्तानी पे आप चुन है साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जोर तोर से। सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक 20 मिनट व्यतीत हो चुका है 6:00। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक आईडीआर 70-80-90 मैस्त्रो माइकल लक्ष्मण यानी मिशेल लक्ष्मण को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं मस्ताना ऑर्केस्ट्रा अंडर लीडिंग फन हफीज खान वाहिद हुसैन के साज और संगीत पर ये अति सुंदर बयान हमारा जियरा भाई।

Tante Indra, राम चरण, सिलवा के माई के नाम से भी लोग उन्हें जानती है। Een opnaam uit 1984 और dat heel populair werd in die tijd. Ja man, College Group onder leiding van Sonny Lal en Mahender Dasrat. साढ़े छः का वक्त हो चुका है साथियों, तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर के जाने वालों के लिए। कुछ ताजे ताजे लिख कर भेजा है भैया भूपेंद्र जी, जो मैं आप श्रोताओं को सुनाने वाला हूँ। अर्ज क्या है डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई सेती यारों का यार, जो हमेशा रहता है बेकरार और करता है हम लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार, उन्हीं का ये लिखा हुआ कुछ शेर और शायरी है। अर्ज क्या है यारो कि ये ना सोचो के फकत नाम लिया करता है, ये ना सोचो के फकत नाम लिया करता है, एक दीवाना तेरी चाहत में जिया करता है, वो जानता है, वो जानता है कि तू उसके मुकद्दर में नहीं, फिर भी हर रोज तुझे याद किया करता है। चाहत का दामन कभी ना छूटे, आप हमसे हम आपसे कभी ना रूठे, इस कदर निभाएं अपने प्यार को हम, धड़कने खामोश हो जाए पर ये रिश्ता कभी ना टूटे। क्या अब तेरे मेरे बीच कोई फासला भी हो, अब तेरे मेरे बीच कोई फासला भी हो, हम लोग जब मिले तो कोई दूसरा भी होना चाहिए ना। हम तो मौजूद थे रातों में उजाले की तरह, लोग निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह, दिल तो क्या हम रूह में उतर जाते, दिल तो क्या हम रूह में भी उतर जाते, उसने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। मैंने जो सोचा वो कभी पाया नहीं, चाह कर भी मैं उसको भूल पाया नहीं, चाहता तो था मैं उसको अपनाना, चाहता था मैं बहुत उसको अपनाना, पर मैंने उसको कभी ये बताया नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, यही तो आप लोगों के भूल है, बताओ। तलाश करो कोई तुम्हें मिल जाएगा, जरूर जरूर तलाश करो, मगर हमारी तरह तुम्हें कौन चाहेगा, जरूर कोई चाहत की नजर से तुम्हें देखेगा, जरूर कोई चाहत की नजर से तुम्हें देखेगा, मगर आंखें हमारी कहां से लाएगा। ये भी होता है यारो, आंखें ही तो पहला कॉन्टैक्ट होता है ना। था कुछ शेर शायरी। अगला बयान एक जबरदस्त कलाकार हमारे सूरीनाम देश का, जो भी वो भी इस वक्त रेस्ट इन पीस है, महान मुकेश जी का गाना बहुत ही जबरदस्त गाया करता था। मैं बात कर रहा हूं उस्ताद का, उस्ताद श्री राम नारायण शिवराम जी का। अन उपनाम उपखनोम met de Yadgar Orchestra in 2012.

महर्षि महान गायक हमारे सूरीनाम देश का शिवराम राम नारायण शिवराम जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। म्यूजिक बाय यादगार ऑर्केस्ट्रा 2012। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो। एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का द मैन विद अ ब्यूटीफुल वॉइस ओम प्रकाश हीरा जी को लाते हैं और वो सुनाते हैं रफी साहब जी का एक गाया हुआ बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग उपनोम इन ज्वाला स्टूडियो म्यूजिक रे अरेंजमेंट बाय माएस्ट्रो ज्वाला।

जबरदस्त जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का मैस्त्रो ओम प्रकाश हीरा के ब्यूटीफुल आवाज से ये अति सुंदर बयान आपने श्रवण कर रहे थे। और देखा जाए द ग्रेट मैस्त्रो ज्वाला का रे अरेंजमेंट था। तो लेकर चलते हैं आप सभी को अगला बयान की तरफ। घड़ी की तरफ देखते हुए यार की 15 मिनट रह गया है 7 बजने में। और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जो आप श्रोताओं के लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आप सभी के खिदमत में। ये भी बड़े स्टूडियो हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का देनहाक शहर से। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं कह रही है आप सभी को रिकॉफ्रेड बाय सरनाम देश के मशहूर गाने वाली ही लांगे से बेसिक फनाफ यार 70 से सिंक नो स्टेट्स। एंड से इज ओक द मदर फ्रॉम बेकेंडे सॉन्ग रेस इल्हाम जो और उनके जो पिताजी है रियाज अहमद अली जी, उनकी वाइफ है शारदा दुखी जी जो भी बहुत अच्छी गाती है काफ़ी दिनों से। तो उन्हीं के मधुर आवाज में सुनिए एक उपनाम जो यार सैफ तक में लिया गया था एंड सैफ तक में तुनवास ओक ऑप्शन बेस्ट होर द ग्रेट ग्रेट ग्रेट शारदा दुखी जी आओ तुम्हें चांद पे ले जाऊं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग आउट में चांद पे ले जाए, कॉफरेट बाय हमारे सुरीनाम देश के मशहूर गाने वाली डिग्रे शारदा दुखी अहमद अली। मिनट बाकी है साथियों, साथ बजने में अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंड देश का खबर इन पाकिस्तान, और एक से एक जबरदस्त सॉन्ग गाते रहते हैं, निकालते रहते हैं। ये कुछ दिन हुए है निकाला हुआ उन्हीं का आवाज में, ओरिजिनल खिस्पेल्ट दो शंकर जय किशन अल्फाजी शैलेंद्र का। डिग्रेट सागर मलिक जी के मैं बात कर रहा हूँ, और ये अति सुंदर बयान वो निकाला है ज्वाला स्टूडियो से, म्यूजिक बाय मैस्ट्रो ज्वाला मुकेश जी का गाया हुआ ये अति सुंदर बयान, दुनिया बनाने वाले।

0: कॉमन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आपकी सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूं यार तो पूरे सात का वक्त हो चुका है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नैचुरली वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो लो बिलो बियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नैचुरली बदंत फॉर एट लिस्टन। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइश से जरूरी खबरें इश्तिहारे या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑर्गामन हो या तो ऑर्गा वुमन तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को होने देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा करते हो देख सभी जानकारी बेल तैन कांतोर यूरोप द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कांतोर 07-3-26-20-47 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-3-26-20-47। जो भी रेडियो का काम होना डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो यू बैन फन हार्ट वेलकम और एंड नैचुरली यू ओक। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एन एस एन ओ कौन से एक कर ओक टीम फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आर ही फिर अमरूपर्स ओक लाइफ सिंग दिस फॉलो ऑन सोशल मीडिया एंड ऑफ द रेडियो होट zeer zeker waar wij binnenkort live voor u gaan zingen. Hè? We hebben al een paar keer al opgetreden en heel veel complimentjes als nog vandaag nog gehad bij die karaoke team Take a Chance waar we met een paar collega's ook actief waren, waaronder Santa Behenji, ik en Bhai Anil. Dus u kunt ook daar een keertje langskomen, maar dat hoort u allemaal een keertje bij Van Bhai Anil zelf. To dosto, wada ke mutabik ek hidam, jese meni kaha kuch nene se vrhet songs from the Bollywood film industry, zara dil ko tham lijiye, ek jabardast gaane wali jo is zamane mein kuch nene स्टाइल्स और नए नए नगमे इंट्रोड्यूस किया है खुद कंपोज करते हैं कुछ खुद गाती है और एक बहुत ही बड़ा संगीत परिवार घराना से लगाव है इनकी। क्लासिकल सॉन्ग भी ये सीखी है और मॉडर्न वेस्टर्न सभी स्टाइल से माहिर है। मैं बात कर रहा हूँ मलकाए हुस्न और मलकाए संगीत द ग्रेट मधुबंती बख्शी को लाते हैं प्रोग्राम में। एंड मैं देखने मारे डोर गब्रोक फ्रॉम द मूवीज 3-2 आज की रात एंजॉय द म्यूजिक वाओ व्हाट कैन से सिंग एंड एन अपार्ट स्टेम फ्रॉम हियर टू गुंटर एंजॉय द म्यूजिक।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

अम्मा द ग्रेट मधुबंती बख्शी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, जो आजकल हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में धमाल ही और धमाका मचा रहे हैं, एक से एक नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स दे देकर। एक अगला बयान सका नित मेरे कहने का मतलब है सका नित अलेन मार उपव्यक्त नमर्स सिंह हॉर्स इज एन ऑलराउंड आर्टिस्ट सका सो इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हाउस एक्ट्रीस खान स्पेलवंत सीत ook heel beeldig uit en wat een uitstraling. Nog eentje van haar, Ake Natural. Leed is Hindi song uit 2025, 100 jaar hier. Oude dikke jij music en lyrics bij Bhanu Singh. Oude is Ganeme Saat, die hij Bhanu Singh bij. Ake Natural.

आखेना चुड़ाओ द ग्रेट मधुबंती बख्शी जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। लायरिक्स बाय भानु सिंह और म्यूजिक इज अरेंज एंड कंपोज बाय मास्टर भानु सिंह। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यार रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री चल रहा है और घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 20 मिनट गुजरने वाला है 7 बजकर। हमारे बात आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है उस्तादों का उस्ताद और हम लोगों का गुरु भाई मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा सामित सेन असिस्टेंट भाई यूसेफ सेतु जी और ये दोनों 8 बजे के बाद आप सभी को खिदमत करने वाला है गीत और गजल ओथ इज गोथ नामक कार्यक्रम लेकर। En in hun programma mag u ook inbellen en naar uw manpassend nummer kunt u bij deze broeders ook aanvragen. To zero program ko sunte rehna kyunki aap hai to hum log bhi hai na miljul ke hum log program ko chalate rehte hain aur saptahik program hum log ko milte rehte hain chalane ke liye aap zarur sunte hain aur hum log सुनाते हैं तो ये टीम तो सदियों से चल रहा है ना और इसने ही चलना चाहिए। अगला बयान एक बार फिर वही मशहूर गाने वाली मलकाए हुस्न मलकाए संगीत डिग्रेट मधुबंती जी यानी कि द ग्रेट ग्रेट ग्रेट इतनी जबरदस्त कलाकारा है ये महान गाने वाली मधुबंती बख्शी जी जो बचपन से संगीत सीखते आ रही है और अब तो क्या सुनाती है और क्या बजाती है ये तो जितना तारीफ किए जाए कम है यार। एक और जबरदस्त सॉन्ग सुनिए शरारत एड फिल्म धुरंधर।

अति सुंदर बयान मधुबंती बख्शी। एक बार फिर आप श्रोताओं के शवा में आप सुन रहे थे उनके ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान है फिल्म धुरंधर। रिमेंबर द नेम साथियों, क्या गला है, क्या आवाज है और क्या दिखती है। कैन सो द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नंबर टू लेको खास एक्ट्रेस है मलकाय हुस्न, मलकाय संगीत सेफ्टर ऑलस में योर अमृत तमाक। तो कुछ नगमे आप सुने इस महान गाने वाले के नतीलक उठाओ दीना वंत जगत हेल फिर फन हार और कोमंड दाख फ्रॉल में द न्यू फिल्म सन बॉलीवुड वंत सेफ्टर द मोये स्टेमर फॉर en ook een aparte stem ook om aparte nummers te zingen. To wat ik het heb ook een beetje reggae music Bollywood film industry kasunani kolito. To je ik funky remix reggae music hey jo aajkal hamare Bollywood film industry mein aaya khas karke Bharat desh aur diaspora jahan tak chal raha hai duniya bhar pe dhamal macha raha hai ye nagme se ऐसे ना मुझे तुम देखो लेकर फंकी रिमिक्स रेगे।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो रह गए बीट पे गाया गया नीले गगन के तले, और ये भी एक ब्यूटीफुल है लेडी वॉइस में। तो यारो धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहे हैं, कुछ आखिरी शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर के चाहने वाले। अर्ज किया हम तो मौजूद थे अंधेरे, हम तो मौजूद थे अंधेरों में उजालों की तरह, तुम ना चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। ये भी होता है यार। खुदाया मेरी सदी में भी कोई चमत्कार कर दे, वो पूछते हैं कि इस दौर में मोहब्बत क्या आप करोगे। अपने आगाज से आज तक जिंदगी तेरी ही याद में घूम रही थी, फिर भी जाने क्यों ये एहसास है, फिर भी जाने क्यों ये एहसास है, जैसे चाहत मेरी कम पर रही। खुदा मुझ पे अपनी एक नजर कर दे, उसे मेरा हम सफर कर दे, जब भी वो सांस ले उसे मेरा नाम सुनाई दे, मेरी चाहत का असर उस पे इस कदर दे। चाहते हैं उनके दामन में खुशियां भर दे, उनकी खुशियों में अपनी जान फना कर दे, कभी वो जो घबराए तन्हाइयों में, तो मैं अपनी हम अपनी चाहतों से उसे शामिल ए महफिल कर दे। आखिरी शेर यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, चाहत की राह में बिखरे अरमान बहुत है, चाहत की राह में बिखरे अरमान तो बहुत है, हम उसकी याद में परेशान भी बहुत है, वो हर बार दिल तोड़ता है ये कह कर कि मेरी उम्मीदों के दुनिया में अभी मुकाम बहुत है। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं यारो, और घड़ी की तरफ देखता हूं तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहे हैं ना, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान है।

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया और ये भी खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से भोली सी सूरत लागू इंडिया रेगे और बेमोलोखी रेगे एस्का कॉफर सॉन्ग्स से मैं निकाला हूँ और कंपोजर है श्री उत्तम सिंह जी। कुछ रेगे सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आप सुन रहे हैं और ये मशहूर नगमा सैयारा भी goes to reggae, relax it, refresh it with reggae groove, Bollywood reborn song Sayyara.

भाई। क्या बात है साथियों, तो आप सुन रहे थे साइरा गोस टू रेगे रिलैक्स रिफ्रेश विद रेगे ग्रूव अंत नेचुरली बॉलीवुड रिबॉर्न। रिमेंबर इट। देखा जाए तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। अब बड़का भैया, दोनों बड़े भाई हमारे खड़ा हो गया है स्टूडियो में हमारे बाद आप सभी को सेवा खिदमत करने के लिए। तो जरूर इन दोनों का प्रोग्राम आप लोग जरूर सुनते रहना, गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम है। एंड इन हिंद प्रोग्राम इम्बेल एन नैचुरलक यू लीफलिंग्स नंबर ओक आंफ्राग हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है उस्तादों का उस्ताद बड़का भैया हम लोगों का डॉनडोली मास्टरो चंद्र सेन गंगा जी मेट सेन असिस्टेंट ब्रूडर यूसेफ सेतु। तो मुझे आप सभी इजाजत दे ये अश्वमेध लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये अश्वमेध है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम लेकर हलिंत मैथ संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम। तो मुझे आप सभी इजाजत दे साथियों और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिससे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वाला दरभर गीत बिल्कुल हर सॉन्ग का प्रोग्राम। और पहला दर्द भरा गीत सुबह पे दर्द भरी दास्ता चली आई माइटी मुकेश के आवाज में।

0: जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों की सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फावन हिंदुस्तानी रेडियो है VVV.fawn FM के चैनल पर वीफी और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 12 मिनट व्यतीत हो चला है, 8:12:08 ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाँ शहर से। जो बीमार लाचार तंदुरुस्त दुआ के प्रार्थना है, जिनकी घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझे पहला कार्यक्रम आप सुन रहे थे भैया सूर्यन भगवान दीन जी से, और भैया सूर्यन भगवान दीन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करने के लिए, और जिस तरह से आपने आगाह के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आहिस्ता घर जाइए, एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भैया सूर्यन बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोमदाख 2 जुलाई है, तो ना 12 जुलाई, ये 2 कहाँ से आ गए यूसुफ। सोमदाख 12 जुलाई आप तत्पर है, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगा शाम होगा या रात्रि होगी पता नहीं है, बहरहाल आपका हृदय से स्वागत करते हुए यहाँ से गीत गजल के कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। भैया यूसुफ मेरे सामने बैठा हुआ है, भैया ये सब अपना आवाज सुना दीजिए, कितना ठंडा कितना गर्म है।
1: कोयनाफन तली फलाई सराज मा रेडियो पावन, गर्मी तो बहुत है स्टूडियो में, और हम लोग अब यही गीत गजल पेश करेगा। पण आप की तो तोलफी शाम में भाई,
0: तोलफी कैसे ब्रूर 3 ईयर
1: अरे
0: सूदत सूदत एक बज जाए, आज फुटबॉल थोड़ो है,
1: आज फुटबॉल
0: ना, ओ तो एयर दर सूद जावे।
1: पहले यूली मसाल फंदा
0: ओके
1: भैया, टेलीफोन नंबर है 07-365-2247 एंड अंदर नंबर है 07-362-2077।
0: भैया यूसुफ थैंक यू वेल। तो आपने सुने भैया यूसुफ ने तार का नंबर दे दिया है, तो अभी मुझे तार का नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप तत्पर है हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए पहला सिलेक्शन हम शुरू कर रहे हैं। इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, लेडी ऑफ रॉबिनहुड। जी हाँ, लेडी ऑफ रॉबिनहुड, सरदार क्वात्रा के साज पर महेंद्र कपूर जी।

0: आज चले लेडी रॉबिन हुड में से निकाले ये गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि गीत गजल के कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं भैया यूसुफ के साथ फिल्म लेडी ऑफ रॉबिन हुड में से निकाल कर सरदार क्वात्रा के साज पर। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं इस तरह से, और वो है ठीक है भैया यूसुफ कोई है लाइन पर?
1: हाँ,
0: पर अच्छा एक मिनट फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत।
2: अस्सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।
0: वालेकुम अस्सलाम भैया, नमस्कार, कैसे समाचार है भैया मोहम्मद
2: भाई? चले चले भाई, कैसे आपके और सबके खैरियत?
0: बस सबके खैरियत ठीक है, हमरो ठीक है, चले धीरे धीरे सवेरे जाग गई ली तब जान ले ठीक है, हम देख ली कि हमारे ही प्लेटफॉर्म थे कहीं और ना पहुंच गई ली तो बोली ना तो ठीक है नहीं दिखती कोई वो बड़का छुरी लेके खड़ा है।
2: अरे बाप रे बाप,
0: बोले वेलकम
2: वेलकम
0: तो तू समझ गई ले तो हुआ कुछ ना कर पाइए तो हुआ कुछ ना बलास्ते हुआ बेबरेक ना कुछ वफ़ बरेक है जितना कुछ रही फर रही कन कल ले वो हिला गया है
2: उस तो कोतरक में लिखा देश तो खाली तो केस जवाब सवाल जवाब तक से पूछेगा तो के
0: हमारे जान हम सोची ला कि हम लोग यहाँ बड़बड़ बतियाई ला हुआ हम लोग का मुंह ना खुली भैया मोहम्मद बताओ कौन गाना मांगत रहे सुने आज
2: फिल्म अहिल्या बसन बहार निहति शैशक के भोजपुरी के गाना आएगा
0: गाना
2: तेरे तेरे नैना में कहो गले नैना।
0: अच्छा यूसुफ लगे लिखाई ले तो
2: हाँ और गाय से गीता देत और मन्ना दी
0: ओके
2: कहो गली में दिस्ती ओ
0: हां ठीक है हां एर नहीं रे बोले पाएगा नहीं प्रिमा अच्छा तो हम कभी मिल जाइए भैया मोहम्मद ओकर इलावा और कुछ धल रहे हैं
2: एगो धल्ली ना पा सके ना भुला सके ना बता सके ना जाते सके तू क्या है मेरे लिए ना खुद समझा सके
1: ये तो नहीं सुना है तो सब चीज़

0: हेलो
1: भैया मोहम्मद से निवेदन है, एक बार फिर तार करें, या तो सेफ न फियर तक पर या सेफ न सेफ तक, पता नहीं क्या हुआ, जना तेल तरवा का और गर्म लग गया। कहा भैया मोहम्मद, आप तार कर सकते हैं, तब तक लीजिए, ये गीत हम चला रहे हैं और तब तक शायद भैया मोहम्मद।
0: या राजीव पाम में जो सर कौन फिल्म कौन गाना है।

0: तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आए, ये गीत हमने पेश किए फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। और चलो देखते हैं भैया मोहम्मद कार्यक्रम में है फौन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनावंद।
1: अस्सलाम वालेकुम, राम राम।
0: हाँ भैया मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से तारमल, हमने ये निका भाई रहा, हमें तरवाग भी गर्म लग गया रहा का
1: ना हमार तरफ बट अगर चाहे अपराध में ना रहा तो चाहे बट अपराधों में फिनो तो
0: ओ अब दी मैंने
1: अब दी मारे वैसे टेलीफोन गए तो बोली बोली का भाई हम चौक गई थी।
0: अच्छा कोई बात, तो अपराध में दर्द में बोली। अच्छा हाँ, तू शेर बोलत रही ले, वो शेर सुना दे फिर से एक बार।
1: हम ओफर न्यूज बोल
0: हाँ ना, तू लग
1: ना पा सके ना भुला सके ना बता सके ना जा सके तू क्या है मेरे लिए ना खुद समझा सके ना तुझे समझा सके सो जाता है हर कोई अपना कल के लिए पर कोई ये नहीं सोचता
0: हाँ, शाबाश
1: के आज जिसका दिल दुख गरम दुख है या वो सोया होगा या नहीं।
0: हाँ मोई शाबाश,
1: भैया
0: मोहम्मद बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ तू भी बहुत शुक्रिया और सॉरी टेलीफोन कर
0: गई कान खबे इस जिंदगी में बहुत कुछ हो सके है। जय श्री राम भैया, नमस्कार। ये था भैया मोहम्मद दनहा के रहने वाला। चलो देखते हैं दूसरे लाइन पर फौन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत कैसे रहले?
2: या खत खुतर भाई
0: सब कुछ मोई
2: या
0: ठंडा ठंडा पड़े इपन बरह में कि ना
2: बहुत गर्म है माया हम तो निकला भाई
0: या तत सुलवार हम लोग बड़ा जल्दी क्लाको करे लगे ना
2: ये ठंडा रहे दफा होत स्कॉट
0: दारम साइम में से बे क्लाखत फेल
2: छो मुते तो फेल।

थोड़ी समय में हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से बहुत दिन बाद ये गीत भी हम सुन रहे हैं, चलो मिल के सुनते हैं।

0: क्या जब साज है ये शहनाई रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाएं फ़ान हिंदुस्तानी राज्य के गीत गज़ल के कार्यक्रम में जो हमने पेश की अनासर चॉइस सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। कोई है लाइन पर भैया यूसुफ? हाँ अच्छा एक मिनट हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: या
1: हाँ भाई।
0: ओ भैया चान नमस्कार।
1: नमस्कार भाई,
0: क्या हाल है?
1: चले

0: धीरे धीरे
1: तब मुई कैसे खिसला मुई
0: हाँ सब कोई मुई भाई
1: तब प्रेमा परिवार सब मुई
0: सब खाए पिए सब कुछ
1: सब कोई मस्त है ठीक है वही चाहिए करी तो
0: या तो
1: या प्रसिस भैया चान
0: हाँ
1: बताओ कौन गाना मांगत रहे सुने
0: गानवा इधर ही आधर दिले देखे चुम तुमने पुकारा और हम चले आए फिल्म राजकुमार के
1: और हम चले आए हरीखल अच्छा बताओ कौन शेर धल्ले हैं
0: तगड़ा वाला कुछ लिखली बाटी
1: एकदम गो हैड ब्रूर
0: अच्छा यादों को भुलाना मैं कुछ डर तो लगता है आंखों को सुलाना में कुछ डर लगता है किसी शख्स को भुलाना देना इतना आसान नहीं होता दिल को समझाना में कुछ डर तो लगता है बड़े महफिल में जब कोई अचानक याद आ जाता है फिर आसान छुपाना में कुछ डर तो लगता है
1: वाह क्या बात है
0: जो शख्स जान से प्यारा हो अचानक दूर हो जाता है दिल को दिलाना है कुछ डर तो लगता है
1: वाह क्या बात है प्यार मोह बहुत मोही लिख के धल्ले रही है छह महीना बाद फिर बोलिए तो
0: ना देखा था ठीक है
1: ना एल मोई भैया चांद बहुत बहुत धन्यवाद
0: अच्छा भाई और फैने अच्छा छोटा के और बता दी
1: हाँ अच्छा छोटा और बता दे
0: एक दिन ये सब चा ना ना नहीं ना
1: मिलल
0: चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों तो ये छोटा क्या ना मैं ना तुम कोई उम्मीद रखूं दिल ना आवाज की ना मेरी तारीफ देखो गलत अंदाज नजर से
1: वो क्या बात है
0: ना मेरा दिल का धड़कन तुमने भी कोई उलझन बन जाए हम दोनों
1: वाह क्या बात है शाबाश
0: अरे और बड़का है
1: मैं नहीं प्रिमा मोई तो एकवा अधवा धल्ले रहिए तो
0: हाँ भाई एक बुक भर गए
1: हाँ तो मुई तो
0: या लिखत लिखन
1: सब स्पार कर ले रही है
0: या सब एको स्पेशल लिखने पर
1: नहीं प्रिमा भैया चांद बहुत बहुत धन्यवाद
0: भाई आपके बहुत धन्यवाद है कि आज अरे हर अतवार के और दोनों दाख के आवे रेडियो पे
1: अब जब बोल देवल गए चाहिए आवे के तो वही तो सेवा है जनता की सेवा करना पांच स्थानीय काम है
0: धन्यवाद आपको
1: आप लोग को भी धन्यवाद आप लोग से हम लोग बाटी जो तू लोग बाटे तो हम लोग हैं जो तू लोग ना रहिए तो हम लोग ना बाटी
0: ओ फैन ऑफ इट सेंडिंग
1: बे ब्रूर तू के फैन ऑफ सेंडिंग ही फील आई सर प्लेजर एंड तो फॉर द वीक
0: अच्छा राम राम भाई
1: जय श्री राम भैया नमस्कार शुभ रात्रि ये था श्रीमान चांद रघुनाथ अल्फानंद इनके रहने वाला और उनकी धर्मपत्नी खिसला जी चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है देखते हैं देनहा के रहने वाला भैया मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम पेश करने वाले हैं और भैया मोहम्मद ये गीत मांग रहा है सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फौन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए तो भैया मोहम्मद लीजिए आपकी मांगी हुई गीत हम लोग पेश कर रहे हैं इस तरह से भैया मोहम्मद देनहा के रहने वाला
2: केदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल

तोरे नए नाम खो गए ले हमार मन्ना दे जी। और गीता रॉय आपको सुनाए हैं ये भोजपुरी सॉन्ग, और ये भोजपुरी सॉन्ग के मांगने वाला है, दन्हा के रहने वाला भैया मोहम्मद। भैया मोहम्मद जो गीत आपने जिक्र की, जिस गीत के जिक्र आपने की, हम लोगों ने पेश की वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और ये गीत आपने मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए शुभकामना के साथ। ओ भैया मोहम्मद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद पेश कर रहा है। तो चलो देखते हैं, इस वक्त लाइन पे तो कोई नहीं है, तो आप तार कर सकते हैं 0753 57 7 तक या तो 0753 20 7 20 7। तो जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने का, तो हम पेश कर रहे हैं इपन ब्यूरख, इपन ब्यूरख के रहने वाली शीला जी यानी माशुका शीला जी के तरफ से, उनके माशुक जो मेरे सामने बैठा हुआ है भैया यूसुफ के लिए, यानी माशुका के तरफ से माशुक के लिए शुभकामना के साथ। चलिए एक शुभ रात्रि पेश करते हुए शीला जी, ये है आपका सॉन्ग।

चाहे पास हो चाहे दूर हो, ये शानदार गीत चला इपन ब्यूरो के रहने वाली माशुका शीला जी के तरफ से, उनके माशुक श्रीमान यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त से निकाले हैं भरत व्यास के लिखी हुई गीत निकिति अख्तम फैफ तक का 1958 का ये गीत कल्याण जी वीर जी शाह के साज पर। शीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है भैया चांद रघुनाथ। भैया चांद रघुनाथ लीजिए, आपके गीत हम चलाने वाले हैं। अल्फरांदा रेंज के रहने वाले श्रीमान चांद रघुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला दोनों की तरफ से शुभकामना के साथ ये शानदार गीत पेश हो रहा है। भैया चांद और खिसला जी लीजिए, आपकी मांगी हुई गीत हम लोगों ने प्लेयर में रखे हैं, बस सिर्फ बटन दबाना बाकी है। तो चलो सुनते फिल्म राजकुमार में से निकाल रहे हैं 1964 का एक गीत शंकर जय किशन के साथ पर, देखती फिर का ये गीत भैया चांद रघुनाथ और खिसला जी के लिए।

0: तुम चैन हो, करार हो मेरी जिंदगी हो, मेरे प्यार हो। सोनू निगम जी, फिल्म मिलेंगे मिलेंगे में से निकाल कर हमने पेश की गीत गजल के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी राधे, खुद नाफंत,
1: खुद
0: नाफंत भैया।
1: हम आम कर ली तो हम देखी दूसरा कोई बचिया है, हम बोले आज ये सब कहीं कहाँ से अलग है, आज तो फुटबॉल ना है
0: ना, दूसरा कोई बतिया था हमारे भूतरा का नहीं जितना बोस खाप का पैसा का नाम चला जाए बोला सिंह कैसे रहे भैया आलस कुछ हम सुन ली तो आज सवेरे 6 बजे गले सूते हैं
1: या एक आप एक आप क्या कहा
0: या दादा
1: तू लग न तू लग सोस्पान हम एंगलाम के ना रहे ली या कुछ फुली नहीं वो मैंने
0: ना हम भाग गए ली सूते एक वक्त से
1: तो देख Yes, you could tell my move on.
0: Yeah,
1: please. Yeah, those all the spanning and so, crack, karat, karat, karat.
0: और हम फुटबॉल मैन से ना बाटी तो का हो है हमसे
1: हम फुटबॉल मैन
0: तो हम देखी लवेल मार एक फरदीप मनी थे लमाल कुछ रहे हैं तुम राजन द्वारका से पूछे ला या तो भैया यूसुफ से पूछे ला देश में से साइन द स्पोर्ट स्पोर्ट लीफ हैबर्स तो कुछ रहे तो यूसुफ के ऐप करब तो तो हम का करेला हम मिक्स कर दिला खेले वो हम मिक्स कर दिला दूसर देश
1: किसने पुकारा मुझे मैं आ गए
0: ओ तो कौन वाल तुम आगे किसने पुकारा
1: हाँ देश देश हथियार सब राइट फोर के
0: ओ ओके
1: या किसने पुकारा किसने पुकारा दिए सांग फिल्म प्यार किए जा तो
0: या
1: हाँ
0: किसने पुकारा
1: हाँ मुझे हाँ, मैं आ गए
0: ओके रेखल राम मुझे मैं आ गई या एक है पम बेया बताओ कुछ और धल्ले हैं बेया जी
1: हमारे के कुछ धरे रहेला असम खोजीला तना मिले
0: ले पूजा के समय खसी है राजा का
1: ना एक एक हाथ बखिन नतन मोपिया
0: बोल या ई
1: एगो है तो सेल खराब हो मोपिया एना एना एगो आदमी बोले अपन औरत से मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तो वो औरत सोचे ये क्या बोले हैं तो उसे पूछे हैं लेकिन ये तुम बोल रहे हैं या दारू तो आदमी ने बोला मैं ही बोल रहा हूँ दारू से वन औरत यार इससे खाली दिन भर दारू पिए है
0: तो
1: पूछे है जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है किसी का हमेशा नहीं यही है कोई किसी का हमेशा नहीं होता इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने के कोई फर्क ना पड़े
0: वाह शाबाश अनस कोम तो धारता है
1: ना द अनस कोम तो धारता है
0: या
1: एंड दैट मेंस हम लोग मेंस बोविस बाती पर इट इज मुइलक
0: सो तो
1: इट इज मुइलक हम लोग तो जानी ला बिहान बाप छोड़ के चल जाए माय बाप छोड़ चल जाए उठ मत तो है वो फदरित एंड तो वेल वो वेट कि एक रोज तो जाना है मैं दारुम से खुद अपने के मजबूत बनाओ
0: या नहीं
1: या दैट यू नीड मूड खान कि दिन रात बैठ के रोइए
0: नहीं दैट नो
1: तो मूड तो प्रोबेर अ बिट स्टार्ट टू सेम
0: नहीं
1: तो खात तो
0: परफेक्ट
1: ओइस सी खावे हम लोग के अंदर मूड तो बदून एन क्लाइन
0: हां गो अहेड
1: वो जाते जाते कहे गए हम सिर्फ ख्वाब में आएंगे
0: अच्छा
1: हमने कहा वादा तो करो हम जिंदगी भर सो जाएंगे
0: मोई एल मोई
1: तो खराब
0: नहीं सही कर
1: एंड एक फटाई के ऑफ एक नॉट क्लाइंट यू हैव
0: बोल दे बोल दे बोल
1: हां ना कोई
0: ये अंदर लाइन इज फ्राई दिस
1: ओ ना कोई किसी से दूर होता है ना कोई किसी की करीब होता है वो खुद ही चल कर आते हैं जो जिसका नसीब होता है
0: शाबाश नहीं हेल्पफुल
1: क्या क्या नख इन लास्ट से नहीं
0: देखो नहीं
1: मंगी डाल के
0: हाँ चला दे तीर
1: हिलाम बेसा रिश्ते तो सभी निभाते हैं फर्क मुल्क वोट कानम दिखता है
0: फर्क फर्स्केल
1: फर्क
0: नहीं दी फर्क फन
1: नहीं फर्क सिर्फ इतना होता है कुछ उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ सिर्फ दिमाग से
0: वाह शाबाश क्या बात है बहुत खूब हेल मोई
1: सो इस तो हो
0: नहीं दरअसल इन द लास्ट
1: या सो इस
0: Maar ja, dat was een prachtige mop en die Sheer Shairi.
1: Ik heb het geschreven, maar andere mensen mogen ook bellen.
0: Ja, natuurlijk. Nee, daar ben ik wel eenmaal van. In ieder geval, dankjewel Bea, dat lied heb ik al.
1: Tot de volgende keer weer.
0: Ja, oké. Heel veel luisterplezier Bea en tot de volgende keer.
1: En veel plezier straks met voetbal kijken.
0: Kijk, heli. Oh, nou, als voetbal na, toch?
1: Nee, als na.
0: नहीं वो वक्त मार देख ले अबे तो हमके सो मारा गुरु बैठे तो हमके फिर यूसुफ के बेल कर एक परत या तो राजन
1: के टेलीविजन
0: के लिए तो अपने
1: देख लिए
0: तो कि है कि ना
1: है हां दे दिया था या
0: दारोम
1: दारोम सेल्फ
0: द बेया हां वो यादवार में दाख को अच्छा हां दस भीतर मिलुकाई के
1: परी
0: ना हमें को का
1: नाम
0: है ऐस दर्द पेंटी लतरवा का के या क्लॉक
1: क्लॉक ऐस
0: होता ये थी बेया जी बेया गजराज जी दना के रहने वाली तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है मेरे सामने बैठा हुआ है जनाब यूसुफ यानी माशूक बैठा हुआ मेरे सामने और वो मांग रहा है गीत अपने माशूका के लिए जो इबन बेरुख में बैठी हुई है इस वक्त और कार्यक्रम सुन रही हैं तो माशूका जी आपका माशूक जो है आपके लिए ये गीत मांग रहा है शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस सरदार मलिक के साज पर इस तरह से

किसने पुकारा मुझे, मैं आ गई। फिल्म प्यार की जामे से निकाल कर ये गीत हम लोगों ने पेश किया ओपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो निकती सैफ ने सस्तक का 1967 का ये गीत चलाया गया गीत और गज़ल में। और ये गीत चला दना के रहने वाली बिया गजराज जी के लिए। दना के रहने वाली बिया गजराज जी के लिए शुभकामना के साथ, बिया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने कोशिश की चलाने को। उम्मीद है आपको आपको भी ये गीत अवश्य पसंद आया होगा ज़रूर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चलो देखते हैं फिल्म सोर्स लॉफ में से निकाल कर निगति एने सस्तक 1961 का ये गीत फिल्म सोर्स लॉफ।

इर्शिला जी, आपकी मांगी हुई गीत बस हमने प्लेयर में रख चुके हैं, चलो सुनते हैं इस तरह से। और बेया नहीं, इर्शिला जी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रवि के साज पर ये शानदार गीत हम चला रहे हैं। इस तरह से आ रहा है इर्शिला जी, रोटरडम के रहने वाली, शुभकामना के साथ इर्शिला जी।

चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। रवि सा रवि के साज पर निकली शस्त्र को 1960 का ये गीत हमने पेश की और पेश करवाने वाली थी रोटरडम के रहने वाली उर्शीला जी के लिए। उर्शीला जी आपको भी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये गीत चला उर्शीला जी के लिए रोटरडम के रहने वाली। लाइन खाली है 0 7 3 7 2 2 7 या तो 0 7 3 2 7 0 0 7 3 2 7 2 7 7। और जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तो चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में। नहीं, उससे पहले ये गीत सुनिए, उससे पहले ये गीत सुनिए के यानी किशन कुमार। अफसोस के भी शो देते समय उनका स्वर्गवास हो गया था कुछ दिन हुए, उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छा है। के आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाते हैं।

के की आवाज में हम आपको सुनाएं, तुम किसी और को चाहे कभी खुदा ना करे। और ये शानदार गीत हमने पेश की गीत गजल के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाएंगे और वो है, ये गीत बहुत दिनों बाद मैं चला रहा हूँ, फिल्म शबाब में से निकाले हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ है और नौशाद अली के साज है। तो लीजिए इसे ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे गीत है और इस गीत की कहानी भी बहुत अच्छी है, बहुत अजीब गरीब है लेकिन बहुत प्यारा गीत है और प्यारी कहानी भी है। रफ़ी साहब की आवाज़ में

नौशादली के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म शबाब में से निकाल कर ये गीत हमने आपको सुनाए ओवर फान हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गज़ल के कार्यक्रम में सौंदख 12 जुलाई के कार्यक्रम में। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। ये भी हो सकता है कि कितने लोग बहुत दिन हुए ये गीत नहीं सुने हैं, और अगर हाल ही में सुने होंगे तो मेरा बदनसीबी है। बहरहाल हम भी बहुत दिन बाद ये गीत चलाए हैं। शुभकामना के साथ सभी सुनने वालों के लिए हमने पेश की। चलिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद एक गीत और आपको सुना सकूँगा, वो ये है मैथ मुकेश द हाफ ट्रफ ऑफ मिलियंस।

0: शमा से कोहे जी कह दे, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस, और लता जी आपको सुनाए फिल्म जय भवानी में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। क्षमा करना, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर, जी हाँ मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश की। भैया यूसुफ, सभी लोग को धन्यवाद दे दीजिए क्योंकि यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने भैया यूसुफ के साथ पेश की। हाँ भैया यूस
1: या ik wil de bellers bedanken die vanavond hebben gebeld. Dat is de heer Mohammed uit Den Haag, mevrouw Sila uit Ypenburg, de heer Tjan Ragunat uit Alphen aan de Rijn, de heer Jozef uit Ypenburg, mevrouw Bea Gedraat uit Den Haag en mevrouw Ursula uit Rotterdam. Dat waren de bellers voor vanavond.
0: Bij Joos, dankjewel dat je wederom vandaag hier zit als mijn rechterhand. En ik zal zeggen tot de volgende keer.
1: Volgende week.
0: Ja, dat was je kariekrim die ik met Bij Joos heb gezegd. Bij Joos heb ik een keer weer heel veel dankjewel gegeven. कि इतनी गर्मी मौसम था फिर भी यहाँ मुझसे पहले पहुँच गया था, अब मैं तो बाद में पहुँचे, लेकिन बहरहाल भैया यूसुफ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी धन्यवाद दे रहा हूँ, ख़ास करके जो लोग भी तार किए हैं, भैया यूसुफ ने अभी नाम बता चुके हैं, आप सबको भी मैं अपने तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पेश कर रहा हूँ ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सब डायरेक्टर की लीड की तरफ से। यह आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है।

मुबारक बेगम आपको सुना रही है। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। मेरे बाद आप सुनोगे हमारे सहयोगी मिलके आपकी सेवा करेंगे, और मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला द्वंद्रदाह, आने वाला द्वंद्रदाह बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को 12 और 3 के दरमियान, रात्रि को नहीं लेकिन दोपहर को, तो 12 ईयर एंड 15 ईयर हम आपसे मिल रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे बात विज्ञापन और न्यूज़ के बाद सभी सहयोगी आपके सेवा में रहेंगे। आप सबको एक शुभ रात्रि पेश है।

अखंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बस दोस्तों, आप लोग को हम कुछ प्यार भरी मस्त भरी गीतों से आज भी आप लोग को हम पुराने गाने कुछ नए गाने से आपको हम सेवा करेंगे। चलते हैं भीगी रात नेक डिफेंस का ओल्ड सॉन्ग परमाश्री मोहम्मद रफी करोड़ों का दिल चुराने वाली नाइटिगेल लता मंगेशकर आशा भोसले इस फिल्म में मीना कुमारी काम किए हैं और अशोक कुमार। आओ मिलकर सुना जाए।

और भीगी रात 1965 का ये फिल्म है दोस्तों। हम और आगे को लेकर अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम अपने गीतों को और आगे को बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, अगर बात करना है तो दिल से करो, ऊपर मन से करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। नई हंसी सी मत का फिल्म है, फिल्म के नाम है सच्चा और झूठा, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज ने काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और क्या बात करती हो, राजेश खन्ना का और मुमताज का ये रोमांटिक सॉन्ग यानी फिल्म थी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी रोमांटिक प्यार भरी गीतों की यानी सॉन्ग आपके हम सुनाएंगे और रेडियो फहम के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों देखा जाए और कितनी दिनों बाद आज हम आप लोग को फिल्म पकीसा का एक गीत सुनाएंगे। और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार ने काम किए थे। और आज हम आप लोग को इस गीत को कितनी दिनों बाद सुनाएंगे। 1973 का ये सॉन्ग है।

और ये गीत फिल्म पकीसा का निकाले हुए गीत सॉन्ग हम आप लोग को कितनों दिनों बाद आप लोग को हमने सुनाए हैं। और दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये हम तुम चोरी से और चोरी में छिछोरी हो जाते हैं और तोरी में क्या क्या ना हो जाते भैया, चोरी में क्या क्या न हो जाते हैं। और ये है फिल्म धरती कहे पुकार का ये सॉन्ग है जितेंद्र नंदा और नाइटिंगेल लता जी और करोड़ चुराने वाला मुकेश माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और ये तुम जो हम तुम चोरी से और बने भी है कौची एक डोरी से जइयो कहाँ ले हुजूर। उसके बाद में हमारे दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम का नाम है सच्चाई मजेदार समाचार, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक हम 6 से 9 बजे रात्रि तक चलाते हैं, मंगलवार को 5 से 7 बजे तक और रविवार को दिन में 1 बजे हम अपना यानी प्रोग्राम को चलाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कौन दिशा से मैं लेके चला रे भतुया, नदिया का पार नदिया के पार फिल्म के नाम है। हेमलता जसपाल सिंह इस गीत को रविंदर जैन के सॉन्ग में और इस गीत को गाया है, एक बहुत मस्त भरी प्यार भरी गीत है। फिल्म के नाम है नदिया के पार नेह दिन होंद एंतुन तख्त का ये गीत है। और आओ मिलकर ये गीत को सुना जाए, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हमें ही आशा उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा जरूर लगेंगे। आओ सुना जाए।

0: और मन ने भरमाई और जाकेरी बतुया कौन दिशा में लेके चला रे बतुया। नदिया कपार फिल्म का नाम है। हेमलता इस गीत को गाया है। और हम चलते हैं दोस्तों अपना प्रोग्राम लेकर आगे। और ये है इस फिल्म किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। और आओ मिल का सुना जाए कौन सा फिल्म का गीत है अभी हमें पता चली गई तो हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि ये कौन सा फिल्म का ये गीत है। लेकिन इसमें काम किया है लीना चंद्रवरकर और संजीव कुमार। गम का फसाना लेना, गम का फसाना लेना। तो आओ सुना जाए ये कौन सा गम है और कौन सा फसाना है। हमारे दोस्तों ये रोमांटिक मूवी का सॉन्ग है। क्लासिक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। आओ सुना जाए।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

और गम का फसाना बन गया। अच्छा किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। हमारे दोस्तों हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत क्या होगा आओ मिलके सुनाई गोरी तेरी गाँव बड़ा प्यारा। और कभी कभी जो गोरी लोन होता है वो गाँव में रहता है देहात में रहते हैं और ये गीत भी है गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा है। तो आओ सुना जाए इस गीत का। फिल्म का नाम है चित्त चोर नीघंती ससीवत का। ये गीत है यूसुफ दास ने इस गीत को गाया है।

गोर गोरी तेरा गांव ना सिर्फ तेरा गांव तुम भी बहुत प्यारा है, तुम भी बहुत प्यारा है गोरी, जैसे तुम प्यारा है ऐसे तुम्हारा गांव भी प्यारा है। और इस फिल्म का नाम है चित्तचोर, जिसमें शरीना वहाप ने काम की है। और इसके बाद हम पुरानी गीतों की भान प्रोग्राम लेकर चलते हैं। सॉन्ग के नाम है दिल विल प्यार व्यार, अरे मैं क्या जानू भैया हम तो छोटा लड़का है। फिल्म के नाम है शागिर्द नहीं हती जीवन शस्त्र का। और ये प्यार यार कुछ जाने भैया, अगर ये प्यार यार आपको मालूम है तो हमें आप लोग जरूर बतला देना, हमें भी मालूम नहीं है प्यार क्या होता है। तो आओ इस गीत से सुना जाए तो साइट मालूम हो जाएगा।

और ये दिल विल प्यार यार जॉनी के भी मालूम ना है दोस्तों, अगर आपको जो मालूम हो तो हमें जरूर बता देना कि ये दिल विल प्यार यार क्या होता है। और अगर आपकी दिल जो है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, कोरा है, किसी आंब के दिल में नहीं बसा है, तो ये गीत आपको सुनना चाहिए।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से मांच आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है वो अपना हो न हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों और हम तुरंत चलते हैं और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा। साधना संगम सरगम है इसमें और फिल्म के नाम है गुत्थे गर्स खुद गर्स। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन अयुमान प्रश्नेटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछें भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ धन धान्य दूध दही सवारी ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ विजय, बायां भाग कहा सुनी झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले। कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले। कंठ का ऊपरी भाग स्वर्ण माल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना, यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग, दुर्भाग्य, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

अपने परीक्षम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं के से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातु में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आएं तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि, कपिल, आस्तिक का स्मरण कर ले। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के क्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्याओं को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 मास से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 मास से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10-11-12-13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो, तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

तुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा। अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए

0: आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। मेरे आवाज के प्यारे सुनने वालों, सेविका शांता जी के प्यार भरे राम राम प्रणाम आज के ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। तो बढ़ चलते सुनने के लिए हमारे राजेंद्र जी के ओर।
1: फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज का जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि सूपनखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि वह श्री कृष्ण की पत्नी बन गई। बहुत ही रोचक विषय है। और इसके बाद विषय आता है कि हिंदू कौन है, क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर आप पूरा सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि सूपनखा कैसे कौन सा पुण्य किया था उसने कि दूसरी लाइफ में श्री कृष्ण की पत्नी हो गई। तो इसी को सबको सुनने के लिए सब श्रोताओं को मेरा आज तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार रहेगा। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: कहने के तो बहुत कुछ है, पर क्या कहे राजेंद्र जी, क्यों ना पहले हम अपने सभी सुनने वालों के लिए वही गीत चला देते हैं जो हरिओम शरण जी हम सब के लिए गा करके छोड़ गए हैं, जो मन से उदास बैठे हुए हैं उन सभी को।
1: जो मन से उदास बैठे हैं उनकी उदासी तो दूर होनी ही चाहिए।
2: जरूर जरूर।
1: और हरिओम शरण जी ने ऐसा एक भजन बनाया है कि सबकी उदासी तकरीबन दूर हो ही जाती है, क्यों ना वो गाना हम पहले सुने और उसके बाद आगे बढ़ें।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों आज हम सबका जो हमारे विषय है कि
1: हाँ आज का जो संदेश है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि संदेश सूपनखा का संदेश है।
0: तो ये बताओ ये कौन सूपनखा है जो जिसका त्रेता में नाक काट दिया गया था?
1: हाँ रावण की बहन सूपनखा है, त्रेता में लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान दोनों काट दिए थे। ऐसा इसलिए कि उन्होंने थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी महसूस कराई भगवान राम को, चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए भगवान राम से। तो उन्होंने बोला मैं तो शादीशुदा हूँ, तो उन्होंने बोला लक्ष्मण के पास जाओ। तो फिर लक्ष्मण ने उनको मना किया कि मैं तो यति हूँ, मेरी तो हो नहीं सकती है। तो फिर भगवान राम के पास भेजा, तो फिर उन्होंने उनके पास भेजा, तो लक्ष्मण को गुस्सा आया और नाक कान ही काट दिया कि जा तब कहीं शादी करने लायक न रहे।
2: इसका और गहराई है, पर अब राजेंद्र इतना कह दिए तो इस पे धरो
0: नहीं, क्योंकि ये बात है, ये एक हम लोग सूरीनाम में होते थे ना, तो रामलीला होते थे, रामलीला राजेंद्र जी
1: जी,
0: तो रामलीला होते थे, तो जिस दिन सूपनखा का नाक कटता था ना, काटी जा, वो दिन तो खास दिन होते थे,
1: काफी
0: हाँ बड़ा भीड़ भाड़ होता था। आश्चर्य की बात है कि बड़ा शायद उस समय पे एक कथा हम समझे नहीं होंगे,
2: पर आपने पूछा तो मैं बता दूं क्योंकि सीता जी है भक्ति और लक्ष्मण जी को कहते वैराग्य, और वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं पा सकते,
0: वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं हो सकता।
2: इसलिए जैसे सूपनखा तुरंत भगवान के ऊपर पास गए और भक्ति और वैराग्य को छोड़ दी, इसलिए उसका उसके साथ ये हाल हुआ।
0: तो दोस्तों ये समझ लेना कि कहीं आप ये दोनों को आप पार करके भगवान के पास पहुंचने का इच्छा कर रहे हो तो जानने रहना कि क्या होने वाला है। राजेंद्र जी आगे संदेश की ओर बढ़िए, क्योंकि बेचैनी से लोग इंतजार कर रहा है, पर ऐसा क्यों ना पहले हम क्यों ना एक उसी अंतर्गत में एक गीत को जो आपने इतना मेहनत से खोज करके रखे, पहले गीत को सुन लेते तो आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं।
1: जरूर पहले गीत सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे।

0: मन मंदिर में। मन और मंदिर की जब बात चलती है तो सारे काम सरल से ही हो जाते हैं। बात चल रही थी सुनने वालों सूपनखा की। सूपनखा रावण की बहन और श्री कृष्ण की पत्नी। जी हाँ, ये कथा बहुत ही रोचक है। त्रेता युग से द्वापर युग तक की ये कथा बेहद दिलचस्प है। जानिए सूपनखा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे स्वयं भगवान की वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दंडकारण्य की स्वामिनी रावण की अति प्रिय भागिनी सूपनखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हों कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जन में सूपनखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी सत्री जिसने नककटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया, अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी। लेकिन इस सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख प्राप्त न कर पाते, लेकिन सूपनखा का ये आशीर्वाद मिला। तो संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? कैसे मिला?
1: अब ये पूछना है, ये वृतांत तो मैं पहला बार सुन रहा हूँ राजेंद्र जी, क्योंकि ये तो ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। अब जैसे आप कह रहे हैं कि संत मुनि ऋषियों जो कितना कठोर तपस्या करते हैं और तभी जाकर के प्रभु परमात्मा से कि उनको प्राप्ति करता है, और ये तो बनमासी किए थे, नाक कट गया था, कान कट गया था, फिर भी प्रभु का प्राप्ति कर लिए, तो इसकी वजह जानना चाहता हूँ राजेंद्र जी। मन बेचैन है और सुनने का इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को एक बार से फिर अभिनंदन करते हुए, और ये जरूर कहना चाहूँगा कि संदेश जो है तो बड़ा ज़बरदस्त है, और हम सब अभी उसके बारे में और भी जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो शांता जी, इसमें क्या ये इस बात को आप थोड़ा से भी जानते थे कि ये वृतांत जो त्रेता में हुआ और द्वापर में कैसा मिलन, इसके बारे में?
2: नहीं, ये त्रेता में जो हुआ, ये जो राम संग राम की कथा में रामायण में, तो उनका कथा तो मैं बार बार सुनी, पर जो कि भगवान श्री कृष्ण के वधू बनी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ।
0: तो अब सुनिए आगे कैसे बनी।
2: वही तो हम बेचैन है, हमारे साथ श्रोताओं भी बेचैन है सुनने के लिए।
0: भगवान श्री राम का सानिध्य मिला, कैसे मिला? सूपनखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवा कर भक्ति स्वरूपा आदया शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दी। दरअसल इस सब का मर्म सूपनखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में सूपनखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। इंद्रलोक की जी।
2: तो इसको शायद कुछ शाप मिला होगा तब ये धरती पर आ गए।
0: हाँ, वही हम आगे बताने जा रहे हैं।
2: अच्छा।
0: उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिका स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय या नयनतारा नृत्य करते समय भू संचालन अर्थात आँखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गई, तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। वज्रा ऋषि के क्रोध का बनी भोजन। उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि वज्रा से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि ये राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग कर दी और सूपनखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म दिया। उसने मन में ठान लिया कि वो प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। अहंकार मई भी सूपनखा थी। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि सूपनखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो श्री प्रभु को प्राप्त कर सकती, किंतु उसने वैराग्य को भी नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा।
1: ये अभी जैसे शांता जी ने कह रहे थे हम सब के साथ ना राजेंद्र जी,
0: जी
1: वैराग्य और भक्ति,
0: हाँ
1: इसी अंतर्गत में तो शांता जी तो काफी जानकारी है आपके।
0: हाँ तो शांता जी तो सब चीज का जानकारी रखती है,
1: अपना
2: है।
1: पिटारा में लेकर
0: अपना पिटारा में लेके घूमती है, तो वो तो सब रखती है।
2: इसलिए कहते हैं सत्संग करो भाइयो,
1: सत्संग में और ऐसे हम लोग के सत्संग वो ज्ञान सरोवर होता है जिसमें हम डुबकियां लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलते आते हैं। जैसे कि आपने कहा राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को ताला किसने लगाया है। तो दोस्तों हम और आगे ये वृत्तांत को सुनने वाले, पर सुनने से पहले राजेंद्र जी क्यों ना एक सुंदर सा गीत हम सब के लिए और चला दे।
0: जरूर जरूर।

0: वही देख रहा हूँ कि गीत में तो राजेंद्र जी ने पूरा कथा रख दिया और कथा हम लोग यहाँ ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं ताकि हम सब के लिए एक सुंदर सा गीत खोज के रखते हैं। और कहावत ये है भी कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर और हमारी सोच, हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा और भाग्य लिखता है। तो हम सब आज के कार्यक्रम में जो राजेंद्र जी हम सब के लिए सुपनेखा का और वृतांत हम सब के लिए खोज करके लेकर आए हैं और हमारे लिए एक गीत का तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है इसका लक्ष्य बस यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके, यही हमारा लक्ष्य है। राजेंद्र जी, कौन सा गीत आप हमारे लिए तैयार करके रखे हुए हैं?
1: गीत बहुत ही रोचक है, बोले राम से सूपनखा मुस्कुराई की कजरी है, अंजू उपाध्याय जी ने गाई है और अमृत अवधि परंपरा की है, बहुत ही अच्छी है, सुनते हैं इसको।

0: मुस्कुराई से बनुआ में आए के ना, बहुत ही अच्छी कजरी जो संजय जी की पसंद आई है। आगे बढ़ते हैं सूर्पनखा के बारे में। सूर्पनखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन बैराणी लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के बस में हूँ। तब सूर्पनखा भक्ति रूपी सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भगवतापराध पर बैठी कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के बस में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊँ। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। इसके बाद सूर्पनखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशैव दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरवा दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी।
1: ये पुष्कर कहाँ है राजेंद्र जी? भारत में
0: पुष्कर
1: एक स्थान को भी कहते हैं पुष्कर तो?
0: हाँ, जयपुर के आगे एक अजमेर से थोड़ा सा आगे 35 किलोमीटर पुष्कर है।
1: पुष्कर वहाँ कहते हैं।
0: हाँ, पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है,
1: एक ही दुनिया पे एक ही मंदिर है ना ब्रह्मा जी का पुष्कर में।
0: जी, तो करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सूर्पनखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण के पति सुख की प्राप्ति होगी। कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयन तारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। सूर्पनखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और वो भगवान की सहचर्या भी बनी।
1: सहचर्या मतलब?
0: सहचर्या मतलब पत्नी।
1: पत्नी
0: सहचर्या मतलब जो जैसे भगवान है तो उनके साथ साथ आगे का जो वृतांत है उसके साथ देना।
1: हाँ,
0: सहचर्या
1: उसको कहते हैं। सहचर्या
0: उसको सहचर्या कहते हैं।
1: ओ, ये बात हुआ
0: जी।
2: और 10,000 बरस तक ये
0: 10,000 बरस तक उनको तपस्या करना पड़ा तब ये मिला। और हम लोग साल भर एक दो साल एक कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान हमसे रूठे हुए हैं।
1: ऐसा होता है ना?
0: तो ऐसा कहते हैं, इसलिए भगवान कभी किसी से रूठते नहीं है। आप देख लो कि कई लोगों ने तो पूरा लाइफ और कई युग भी तपस्या करी तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं, और कलयुग में तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग नाम ही भगवान का लेने से जल्दी सुमिर सुमिर करके उद्धार हो जाता है।
2: इतने

0: द्वापर और त्रेता का वृतांत। और इसे सुन करके हमें अच्छा लग रहा कि भाई राजेंद्र जी इतना सुंदर संदेश हम सब के लिए रखे, पर राजेंद्र जी आगे का वृतांत क्या है?
1: आगे का वृतांत तो सूपनखा का एकदम समझ ही गए सब लोग, और आगे की वृतांत सुनाने की जरूरत भी नहीं है कि इतना ही वृतांत बहुत है,
0: इतना ही बहुत है।
1: हाँ, आगे का एक बहुत ही सुंदर गाना है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इस क्या बनेगा, फिर देखते हैं क्या बनना।
0: चलो सुन लेते हैं कि हमें क्या बनना है।
1: जी जरूर।

0: लाशों के कफन बेचने वाले,
1: ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले।
0: तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
2: इंसान के औलाद है इंसान बनेंगे, तो कैसा इंसान बनना आपको?

0: अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे।
1: इस बात पर ये भी कहना चाहती हूँ, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए,
0: तो सुना दो आगे।
1: अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट जाए।
0: शांता जी ने बहुत सुंदर संदेश दिए दोस्तों।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है। और ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जिसमें हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपना जीवन का ज्योति जो जल रहे हैं इसमें कोई भी प्रकार से और भी प्रकाश आ सके। तो हमारी खोजी सेना जो है हम सबके लिए विषय रख देते हैं, और जैसे कि अभी आपने राजेंद्र जी के मुखान से सुने कि त्रेता का वृतांत और द्वापर का वृतांत जो जा कर के हम शायद कभी नहीं सुने होंगे इसके बारे में, तो आज इस बात को हमें भी सुनने को अवसर मिला।

कहा जाता है कि समय की कीमत, इस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बात किसी ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि अखबार जिसे हम क्रांत से जानते हैं ना, तो अखबार से पूछो कि सुबह की चाय के साथ आता है और शाम के चाय तक रद्दी हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में जो करना है समय पर कर लो, क्योंकि जिंदगी मौका कम अफसोस ज़्यादा देते हैं। तो हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: विशेष हिंदू शब्द की खोज हीनम दुष्यंती इति हिंदू से हुई थी, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द करोड़ों वर्ष प्राचीन संस्कृत शब्द से है। यदि संस्कृत के इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो पाएंगे हीन प्लस दू बराबर हीन भावना से दूर, यानी जो हीन भावना से, हीन भावना समझिला संजय जी?
1: ना ना समझिल, बोले तो
0: खराब भावना,
1: खराब भाव,
0: हीन मतलब पीछे,
1: हीन
0: भाव, खराब भाव, भावना, भावना जो रहे
1: हिंसक के हीन है वो।
0: हाँ, हिंसक के हीन रहे,
2: जो खराब काम करे।
0: हाँ,
1: वो ना ठीक है,
0: ना ठीक,
2: ना ठीक काम करे। हाँ,
0: अर्थात जो हीन भावना या दुर्भावना से दूर रहे, मुक्त रहे, वो हिंदू है।
2: खराब काम से जो दूर रहे, हिंसा से दूर रहे, चोरी चपाटी से दूर रहे।
0: हमें बार बार सदा झूठ ही बतलाया जाता है कि हिंदू शब्द मुगलों ने हमें दिया, जो सिंधु से हिंदू हुआ। हिंदू शब्द की वेद से उत्पत्ति है। जानिए कहाँ से आया हिंदू शब्द और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदू शब्द सिंधु से बना और यह फारसी शब्द है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल झूठ फैलाया जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला।
1: तो राजेंद्र जी,
0: जी
1: अगर आप कहते कि लोग ऐसे कहें कि क्योंकि ये तो हमारे इतिहास में शायद लिखे होंगे कोई कुछ लोग कि सिंधु पर, सिंधु है क्या है?
0: सिंधु घाटी की सभ्यता है। एक आपने इतिहास में देखा होगा कि सिंधु एक घाटी है, उसकी पूरी एक सभ्यता है। तो इतिहास में वो बहुत सारा उसका देखने को मिलता है।
1: हाँ,
0: वो एक प्रोग्राम बन सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता पे। आप चाहेंगे तो अगली बार वो प्रोग्राम हम धरेंगे यहाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता।
1: काफी जानकारी उस पे,
0: बहुत बहुत ज्यादा
1: तो अच्छा, उसके बारे में एक बार जरूर बात करेंगे। हाँ, पर आज हो रहा है हिंदू का बात,
0: जी
1: सिंधु का नहीं, हिंदू,
0: हिंदू का।
1: शांता जी, आपको इसके बारे में कुछ कहना है?
2: हाँ, तो क्योंकि मुझे आज पता चला भी बहुत सारे चीजें, तो मुझे बहुत गर्व है।
1: सही बात, सब गर्व के बात। ये कार्यक्रम ही ज्योति का प्रकाश ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग के विशेषज्ञ जो हमारे विषय रखते हैं
2: अलग अलग से विषय,
1: अलग
2: हर सप्ताह कुछ अलग से हम लाते हैं, इस पे हमारी भी उन्नति होती है।
1: जरूर जरूर, हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा और प्रकाश आ जाता है ना।
2: एकदम।
1: तो राजेंद्र जी सुना दो आगे।
0: हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला है। ऋग्वेद के ब्रह्मस्पति आगम्य, ऋग्वेद से बृहस्पति आगम्य में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार आया है।
1: उल्लेख के मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: उल्लेख मतलब देखना, जैसे ये इस किताब में हमने ढूंढा और वो लिखा हुआ मिला, उल्लेख, लेख को
1: लिख, जो लिखा हुआ है,
0: जो लिखा हुआ
1: जिसमें
0: है
1: जिसमें मिल सकते हैं,
0: उसमें मिल सके। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के बृहस्पति आगम्य में मिलता है उल्लेख। हिमालयम सभारंभ्य यावतम इंदु सरोवरा तम देव निर्मतम देशा हिंदुस्तानम प्रचच्छते। इस प्रकार मिलता है लिखा हुआ ऋग्वेद में, अर्थात हिंदू से, हिमालय से इंदू सोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं।
2: अच्छा,
0: केवल वेद ही नहीं बल्कि शैव ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। हीनम चा दुस्ततेवा हिंदू रिच्चतुच्चते प्रभे, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। इससे मिलता जुलता लगभग यही श्लोक कल्पद्रुम में दोहराया गया है। हीनम दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। क्यों ना हम एक आप कुछ पूछना चाहें या गाने की तरफ बने?
1: नहीं, इच्छा है कुछ इसी अंतर्गत में जो गीत होगा, कुछ पता नहीं शांता जी पिटारा से क्या छोड़ने वाले हैं।
0: हाँ, पिटारा में जो शांता जी ने छोड़ ही रखा है, हम उसको सुनते हैं।

0: घूमे घूमे घूमे घूंगर, पद्मावती फिल्म का बहुत ही अच्छा जो गाना अभी आपने सुना है।
1: ये फिल्म आपने देखे कि ना?
0: नहीं, मैंने नहीं देखा ये फिल्म, शांता जी ने देखा। शांता जी इसका कुछ वृतांत बता सकती है, लेकिन इस फिल्म पे बहुत हंगामा हुआ था।
1: हाँ, मैंने भी इस फिल्म के बारे में काफी हंगामा हुआ था भारत में।
0: जितना हंगामा हुआ उतना ये फिल्म सुपरहिट हो गई।
1: अच्छा, शांता जी आपने देखा ये फिल्म?
2: फिल्म हमने देखा यहाँ शहर में, बहुत जैसा राजेंद्र जी कहा एक सुपरहिट फिल्म है। और अगर इस फिल्म को आपको देखोगे तो आपको जैसे सांस बंद कर कर देखना पड़ेगा।
1: अच्छा, इतना गंभीरता फिल्म है।
2: हाँ।
1: ऐसा क्यों नहीं करते राजेंद्र जी, क्योंकि आप जो वृतांत सुना रहे हम सबके हिंदुत्व के बारे में, उसमें क्या और संदेश है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी ने फिर एक अच्छा संदेश भेजा है।
0: क्यों ना वो संदेश पहले
1: सुना दूं मैं?
0: जरूर,
1: क्योंकि संदेश तो आते रहते हैं और यहाँ संदेश की खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है। खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियाँ महक जाती है। ऐसा है ये वृतांत।